मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 24वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 14 मई सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है आज की ये सभा।

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आइए खेत खलियान कार्यक्रम में सुने वार्ता। वार्ता का विषय है बरसाती भिंडी की खेती। वार्ताकार श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। खरीफ मौसम के लिए भिंडी लगाने का समय अभी चल रहा है, इसे बरसाती भिंडी के नाम से भी आप जानते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में हैं वैशाली बधु, पूसा सावनी, हरी चिकनी, पॉर्किंस, लॉन्ग ग्रीन लोकल, सेल वन, पूसा मखमली। बरसाती भिंडी की बुआई किसान भाई जून जुलाई में कर सकते हैं। इस समय बुआई करने से लाभ जो है अच्छा मिलता है। खेत की तैयारी करते समय आप ये ध्यान रखें कि मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई एक बार कर लें, उसके बाद से 2-3 जुताइयां देसी हल से करें ताकि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद डालें। और उस समय एक और बात का ध्यान रखें कि नीम की खल्ली का प्रयोग खेत में जरूर करें या करंज की खल्ली का प्रयोग करें ताकि आपके खेत में भूमिगत कीड़े जो हैं वो नुकसान नहीं कर सके। बरसात के मौसम में जब आप भिंडी की खेती करते हैं तो उसमें 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। जहां तक खाद तथा उर्वरक का सवाल है तो सड़ी हुई गोबर की खाद 30 टन, नेत्रजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में दें। बोने के समय नेत्रजन 60 किलोग्राम और 40 से 45 दिनों बाद 60 किलोग्राम नेत्रजन का व्यवहार करें। अस्फुर 70 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में बोने के समय आप खेत में दे दें। इस मौसम में सिंचाई करने की आवश्यकता विशेष नहीं होती है भिंडी की फसल को, लेकिन प्रारंभिक दिनों में आप जब मौसम गर्म रहे और वर्षा नहीं हो उस समय एक या दो सिंचाई जो है आप करें। भिंडी की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधे को रोग और कीड़ों से कैसे आप बचाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीला मोजाइक रोग के बारे में, जो कि भिंडी में बहुत होता है। इस रोग में पौधे की पत्तियों के ऊपर, तनों के ऊपर और कभी कभी संपूर्ण पौधे पर चित्तियां पड़ जाती हैं जो कि पीले रंग की होती है, अनियमित आकार की होती है, ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से घरों में मोजैक किया जाता है, इसीलिए इसका नाम मोजैक रोग है। यह रोग वायरस के द्वारा फैलता है, इसलिए इस रोग को रोकने के लिए अभी तक कोई विशेष दवा नहीं बनी है। केवल इस रोग को फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं उनको यदि आप नियंत्रित कर लें तो ये रोग जो है नहीं होता है। इस रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे पर कीड़े प्रसारित करते हैं, यानी कि जो रोगजनक वायरस होते हैं उन्हें कीड़े अपने साथ लाते हैं रोगी पौधे से निरोग पौधे पर। तो उन कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ पौधों के ऊपर इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव जो है आपको करना होता है। खेत में यदि इस रोग के लक्षण दिखाई दें तो पहले ही पौधे को उखाड़ कर फेंक दें और बाकी स्वस्थ पौधों पर इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव करें ताकि कीड़े नहीं आए और आपकी फसल जो है वो बची रहे। बरसात के मौसम में कीड़े के द्वारा ये फल छेदक कीड़ा और तना छेदक कीड़े के द्वारा नुकसान भिंडी की फसल को किया जाता है। इसमें फलों के अंदर छेद पाए जाते हैं, तनों के अंदर भी छेद पाए जाते हैं, फलों के ऊपर काला पदार्थ भी जमा रहता है जो कि कीड़े का बिष्ठा होता है। तो इस तरह से फल की गुणवत्ता खराब होती है और बाजार में इसका मूल्य नहीं मिलता है। इस कीड़े को नियंत्रित करने के लिए आप इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव ऊपर से कर सकते हैं।

0: या दानेदार दवा का भी प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन दानेदार दवा का जब आप प्रयोग करें तो काफ़ी सावधानी के साथ, दवा प्रयोग करने के 1 महीने के बाद ही फलों की तुड़ाई करें, और दवा प्रयोग करने के पहले आप फलों की तुड़ाई कर लें, क्योंकि ये दवा काफ़ी जहरीली है, जैसे दानेदार दवा फ्यूराडान है या 4-10G है, तो इसके प्रयोग के पहले काफ़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। खेत में खरपतवार नहीं हो इसकी भी व्यवस्था आप करें, और समय समय पर देखभाल करते रहें तो भिंडी की फसल से उत्पादन अच्छा होगा।
1: खेत खलियान में वार्ता का विषय था बरसाती भिंडी की खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। आइए सुने दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स @20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।

0: आहट लग जाती है। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जिन्हें अपने जीवन का बहुत अनुभव होता है, जिन्हें बहुत सी बातों का अनुभव होता है और उनके मन में भक्ति भी होती है, श्रद्धा भी होती है, सच्चे मन के होते हैं, उन्हें आप ये कहते सुनेंगे कि जब सुबह वो भजन करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि प्रभु भी उनके आसपास हैं कहीं, या फिर कभी भी वो कहेंगे कि हमें एहसास हो रहा है कि प्रभु हमारे आसपास ही हैं। और ये तो बात हुई प्रभु की। फिलहाल हम मौसम की बात करते हैं। मौसम क्या कह रहा है, मौसम आज कैसा रहने वाला है, मौसम की बात जानते हैं। और मौसम के बारे में भी जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो काफ़ी अंदाज़ा लगा लिया करते थे। और फिलहाल हम तो वैज्ञानिक के हिसाब से बात करेंगे। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के हिसाब से अगर हम बात करें तो 13 से 17 मई के दौरान, यानी कि अगर हम आज के बारे में बात करें, 14 मई की बात करें, तो आज एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बात करें तो कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है और सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि अभी यानी कि आज 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। तो ये हो गया मौसम का हाल, मौसम का मिजाज। फिलहाल हम चलते हैं एक छोटे से अंतराल पर। अंतराल के उस पार हम आपको यहीं मिलेंगे। आप भी कहीं मत जाइएगा।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexus showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3 year warranty. TNC applies.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रहना नहीं देश वीराना है। देश यानी कि हमारी ये दुनिया। कुछ लोग ये बात समझते हैं कि ये दुनिया वीरानी है, एक दिन हमें इस दुनिया से चले जाना है, और कुछ लोग इसी दुनिया को अपना सब कुछ मान लेते हैं। फिर चाहे आप पहले वाले कैटेगरी में हो या फिर दूसरे वाले में, यानी कि आप इस दुनिया को वीराना समझते हो या फिर इसी दुनिया को अपना सब कुछ समझते हो, दोनों ही सफ़र पर होते हैं। पहले इस सफ़र पर होते हैं कि वो अपने आप को पूरी तरीके से समझ लें, जान लें, और इस दुनिया को भी समझ लें, जान लें, और दूसरे इस दुनिया को समेटने के सफ़र पर होते हैं, इस दुनिया को अपने आप के आसपास की दुनिया को और भी खूबसूरत बनाने के सफ़र पर होते हैं। सफ़र चाहे जैसे भी हो, आप पहले कैटेगरी में हो, दूसरे कैटेगरी में हो, दोनों ही सफ़र खूबसूरत है। और खूबसूरत सफ़र तब और भी हो जाता है जब कोई अच्छा साथी मिल जाए। कई बार होता है जब आप ट्रेन से जा रहे होते हैं तो कोई ऐसा साथी मिल जाता है जिससे आपका मन मिलता हो, या मन ना भी मिलता हो तो बात अच्छी चल पड़ती है। फिलहाल हम ट्रेनों के हाल, ट्रेनों के मिजाज के बारे में भी जानेंगे। हो सकता है कि आज आप किसी सफ़र पर निकले और आपको कोई अच्छा साथी मिल जाए। फिलहाल तो आपके साथी हम हैं, आपको आगे लेकर जाएंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल हम एक लेते हैं छोटा सा अंतराल। अंतराल के उस पार जानेंगे ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का मिजाज।
1: Some just go through the day. You could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
0: एक छोटे से अंतराल के बाद आइए जानते हैं ट्रेनों का हाल। ट्रेन संख्या 15553 यानी कि भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस सुबह 7:50 पर भागलपुर से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 13016 यानी कि हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस 7:45 पर भागलपुर पहुंचेगी। 12368 अपने निर्धारित समय से 3:01 की देरी से चलते हुए 11:16 पर भागलपुर आएगी। हम बात कर रहे हैं आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस की। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र मेल की यानी कि 15658 तो अपने निर्धारित समय 8:05 पर भागलपुर पहुंचेगी। 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर इसका सही समय है 8:37। 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस यानी कि 13403 अपने निर्धारित समय 9:00

0: भागलपुर पहुंचेगी। 6-3-4-3-1 साहिबगंज जमालपुर MEMU अपने तय समय 9:15 पर भागलपुर आएगी। 1-3-4-0-9 मालदा क्यूल इंटरसिटी अपने तय समय यानी कि 9:35 पर भागलपुर आएगी। 1-3-2-4-1 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी सही समय से चलते हुए 10:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। अगर हम बात करें भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस यानी कि 1-2-3-6-7 की, तो ये अपने तय समय 11:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। ये था ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का मिजाज। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। अंतराल के उस पार हम यहीं मिलेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
0: ठीक, अपने वादे के अनुसार अंतराल के इस पार आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। और अब हम एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी सुनने वाले हैं। कहानीकार हैं राम किशोर और कहानी है टूटती बेड़ी। आइए सुनते हैं कहानी टूटती बेड़ी और जानते हैं इस कहानी में क्या खास बात है।
2: पलंग पर बैठी मनोरमा अपने अतीत में खोई थी। उसे पढ़ाने के लिए बाबू ने पर्याप्त खर्च कर शहर स्थित कॉलेज के निकट एक लॉज में उसके रहने की व्यवस्था कर दी थी। उसने एक महिला कॉलेज से BA की परीक्षा पास की, उसकी आगे की पढ़ाई रोक दी गई। उसका भाव गतिशील था। नारी स्वतंत्रता आंदोलन जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। नारी का यह जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने हक की खातिर वह पुरुषों से संघर्ष कर रही है। मैं भी इसके पक्ष में हूँ, परंतु नारी स्वतंत्रता नगरों तक सिमटी हुई है, गांव में कतई नहीं। गांव के क्रूर और हिंसक लोगों से पार पाना मुश्किल है। यहाँ नारी स्वतंत्रता की बात बेईमानी है। इसी के कारण भैया जब तक मेरी पिटाई कर देते, बाबू भी मुझे मारने से बाज नहीं आते। माँ की भी कटी जली बातें, समाज का दबाव अलग से। भला ऐसे में नफरत से उसकी नाक फरक उठी। मरकरी की दुधिया रोशनी से कमरा नहा रहा था। सफ़ेद दीवार में गांधी जी एवं अन्य महापुरुषों के चित्र टंगे थे। माँ पास की मेज पर करीने से कुछ पुस्तकें रखी थी। पास एक कुर्सी भी थी। दीवार घड़ी में 10:10। उसने आगे सोचा, भैया और बाबू ने कल रात जबरन मेरी शादी करा दी। आज उन्होंने मुझे यहाँ अपने यहाँ ले आया। अब मैं ससुराल रूपी कैद में हूँ। किवार खोले जाने की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। इंद्रदेव ने धीरे से रूम में प्रवेश किया। साहबी मोनरमा पलंग से उतरकर बगल में खड़ी हो गई। आकर इंद्रदेव पलंग पर बैठ गया। उसने मुनरमा पर नज़र डाली, फिर बोला, आओ आकर मेरी बगल में बैठो। सकपकाई मुनरमा चुपचाप खड़ी रही। वह उठकर मनोरमा के पास आ गया। उसने मनोरमा का हाथ पकड़ लिया, फिर बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति पत्नी के बीच भेद कैसा, चलो पलंग पर। उसके बल का प्रतिरोध करती मनोरमा बोली, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। क्यों? मैंने दिल से आपको अंगीकार नहीं किया है। मतलब? वह चुप रही। मनोरमा, योग समझकर ही तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी मेरे साथ कर दी है। आप मेरे बेजान शरीर के पति हो सकते हैं, मेरी आत्मा के नहीं। अगर ऐसी बात थी तो तुमने इस शादी का विरोध क्यों नहीं किया? खूब विरोध किया। विरोध के कारण ही भैया ने लाठी से मेरी पीठ फाड़ दी है। बाबू ने भी मारा पीटा। माँ और भाभी ने मिलकर मुझे प्रताड़ित किया, समाज की प्रताड़ना अलग से। क्षण भर रुककर वो आगे बोली, जख्मों से मेरा शरीर अटा पड़ा है, उन जख्मों को आप देख सकते हैं, कहकर उसने

ब्लाउज खोलना शुरू किया। ब्लाउज खोलने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। मना करने पर मनोरमा ने ब्लाउज खोलना बंद कर दिया। सोचकर इंद्रदेव बोला, तुम्हारी पीड़ा असहनीय है, यहाँ रहोगे तो मैं तुम्हें यथोचित सम्मान दूंगा, मैं यहाँ खुशी नहीं रह सकूंगी। अगर आप जबरन रखना चाहेंगे तो मौका पाते ही मैं अपने जीवन को नष्ट कर लूंगी। मनोरमा की बातों ने उसे विचलित कर दिया। सोचकर इंद्रदेव बोला, मनोरमा, मैं एक प्रगतिशील और संवेदनशील इंसान हूँ। मैंने MA PhD की डिग्री ली है, कॉलेज में व्याख्याता के रूप में बहाल नहीं हो पाने के कारण बरियारपुर स्थित एक हाई स्कूल में शिक्षक हूँ। तू अपनी पीड़ा का सच बता दो, संभव है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। आप मेरा सच जानेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अन्य पुरुषों की तरह आप मुझे पीटेंगे, कदापि ऐसा नहीं होगा, बेफिक्र तुम अपना सच कहो। उसके आश्वस्त करने पर मनोरमा ने कहना शुरू किया, पड़ोसी सुदेश और मैंने प्राइमरी से हाई स्कूल तक की पढ़ाई साथ साथ की है, बचपन से हम दोनों मित्र रहे, जुवा होने पर हमारी मित्रता प्रेम में तब्दील हो गई। क्षण भर रुककर वह आगे बोली, सुदेश ने विश्वविद्यालय से MA किया, कुछ दिनों तक पटना में रहकर उसने BPSCE की तैयारी की, 2 माह पूर्व उसे रांची के एक प्रखंड में CEO की नौकरी मिल गई है, कहकर वह चुप हो गई। उसकी बात सुनकर इंद्रदेव बोला, अगर ऐसी बात पहले मुझे मालूम हो जाता तो मैं तुम्हारा साथ विवाह नहीं करता। पता आगे क्या करना है? मैं और सुदेश ने साथ साथ जीने मरने का संकल्प लिया है, तुम दोनों ने आपस में शादी क्यों न कर ली? अगर उससे शादी करती तो मेरे बाप की नाक जो कट जाती। नाक बचाने के लिए ही भैया बाबू ने मुझे सुदेश से शादी नहीं करने दी। चूंकि मैं सौवर्ण अमीर बाप की बेटी हूँ और सुदेश पिछड़ा वर्ग का युवक। देर बाद इंद्रदेव ने पूछा, सुदेश से तुम्हारी बात होती है? 1.5 माह पूर्व भैया ने मुझसे मोबाइल छीनकर फोड़ दिया, सो उससे बराबर बात नहीं हो पाती है। उस दिन बाजार में सुदेश की बहन सुषमा से भेंट हुई तो उसी के मोबाइल से सुदेश से बात की थी। उसे क्या बात हुई थी? यही कि इसी माह के 10 जुलाई को वह अपने घर आएगा, इस बार वह पूरी सावधानी और गोपनीयता के साथ मुझे अपने संग लेकर गांव से लौटेगा। तुम्हारी शादी हो गई है, अब वह तुम्हें स्वीकारेगा? 100% हम दोनों का प्यार अटूट है, मनोरमा की बातों से झकझोर दिया। उसने मन ही मन हिसाब जोड़ा, आज से 1 सप्ताह बाद 10 जुलाई आएगा। इंद्रदेव पलंग पर से उठ खड़ा हुआ, उसने न्याय की दृष्टि से मनोरमा को देखा, फिर बोला, मनोरमा, अनजाने में इंसान से भूल हो जाती है, अगर वक्त रहते भूल सुधार ली जाए तो आदमी का भला होता है। क्षण भर रुककर वह आगे बोला, मैं तुम्हें अपने बंधन से मुक्त करता हूँ, कल तुम्हें मायके पहुँचा दिया जाएगा, कहकर वह तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गया। मनोरमा उसकी उदारता पर अचरज में पड़ गई। 10:15 बजे मनोरमा अपने मायके पहुंच गई। उसे यहां पहुंचाने इंद्रदेव साथ आया था। एक दिन बाद ही मनोरमा का ससुराल से यहां लौट आना, यह बात माँ बाप भाई भौजाई गोतिया दियाद सभी को अज्ञात आशंका सताने लगी। उन सब की आशंका के बीच इंद्रदेव बोला, वहाँ शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से मनोरमा रात भर छटपटाती रही, यहाँ शांति से रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाने के बाद उसे ले जाऊँगा। जमाई की बातों से सभी को तसल्ली मिली। उसका अवकाश आज समाप्त हो रहा था, कल उसे स्कूल में उपस्थित होना होगा, सो कुछ घंटों के बाद वह घर लौटने के तैयार हो गया। इंद्रदेव ने अपनी सहज से कहा, मनोरमा को दरवाजे पर भेज दिया।

0: लीजिए, जाते वक्त उससे भेंट कर लूँ। सहरज दरवाजे पर से आंगन चली गई। कुछ देर बाद मनोरमा उसके सामने खड़ी थी। इंद्रदेव ने अपनी जेब से हजार हजार के दो नोट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे रख लो, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी जब तुम अपने प्रेमी के संग चुपचाप यहाँ से जाने लोगे ना, उस वक्त ये पैसे तुम्हारी मदद करेंगे। मनोरमा ने नोट ले लिया। तुम्हारा जीवन सुखी हो, कहकर इंद्रदेव उसके दरवाजे पर से अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। मनोरमा श्रद्धायुक्त कृतज्ञ नजरों से उसे जाते हुए देखती रही।
1: हम सुन रहे थे कहानी टूटती बेड़ी। कहानीकार थे राम किशोर, और ये कहानी आपको एक फिल्म की याद दिलाती है, पर अंत थोड़ा अलग था। जी हाँ, फिल्म हम दिल दे चुके सनम। तो आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं और गीत के उस पार मिलते हैं।

बहुत ही प्यारे से गीत के इस पार हम हैं आपके साथ। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। और कार्यक्रम में अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। जी हाँ, आज के दिन क्या कुछ घटित हुआ है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने से पहले जानेंगे वर्तमान के बारे में। वर्तमान के बारे में अगर बात करूं तो 7:35 हो चुके हैं। दिन है आज गुरुवार का, तारीख है 14 मई 2026। तो 14 मई के दिन क्या कुछ घटित हुआ है, आइए जानते हैं। 1999 में पाकिस्तानी पत्रकार जनम सेठी की पत्रिका फ्राइडे टाइम्स की जब्ती सदी का आखिरी विश्व कप क्रिकेट की लॉर्ड्स इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था आज ही के दिन। साल 2001 में भारत और मलेशिया के साथ समझौते हुए। साल 2004 में डेली मिरर नामक पत्रिका ने इराक में युद्धबंदियों पर कथित अत्याचार को दर्शाने वाली झूठी तस्वीरों के प्रकाशन के लिए ब्रिटेन से माफी मांगी थी। साल 2006 में पूर्व कम्युनिस्ट नेता गियोर्गियो नेपोलिटानो इटली के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रबंध संपादक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता एम रोसेंथल का 84 वर्ष की अवस्था में आज ही के दिन साल 2006 में निधन हो गया था। साल 2006 में चीन ने कला के स्तर पर चल रही जालसाजी से बचने के लिए एक आयोग का गठन किया था। साल 2007 में जापान ने अपने शांतिवादी संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। साल 2008 में टाइम्स एनआईईई ने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर मार्केटिंग एसोसिएशन इनमा अवार्ड 2008 जीता था। भारत रूस के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझौते हुए थे साल 2010 में। अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन निधन हो गया था। साल 2016 में कंडासामी कुप्पुस्वामी का निधन हो गया था, तमिल के विद्वान और लेखक थे। महेंद्र सिंह टिकैत का निधन 2011 में हुआ था। महेंद्र सिंह टिकैत किसान के नेता थे। साल 2010 में वृंदा करंदीकर का निधन हुआ। वृंदा करंदीकर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि थे। जगदीश चंद्र माथुर प्रसिद्ध नाटककार का निधन 1978 में हुआ था। 1963 में आचार्य रघुवीर का निधन हुआ। आचार्य रघुवीर महान भाषाविद, प्रख्यात विद्वान, राजनीतिक नेता और भारतीय धरोहर के मनीषी थे। अल्लाह वक्स अंग्रेजी शासन के दौरान एक जमींदार, सरकारी ठेकेदार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता थे। इनका निधन 1943 में हुआ था। 1923 में एनजी चंदावरकर का निधन हुआ। एनजी चंदावरकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन जन्म हुआ था, जो आज मना रहे होंगे अपना जन्मदिन। 1657 में संभाजी शिवाजी का जन्म हुआ के ज्येष्ठ पुत्र जी हाँ 1657 में जन्म हुआ था शंभाजी का। शंभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे। अरुण चंद्र गुहा का जन्म 1892 में हुआ था। अरुण चंद्र प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। 1883 में अल्लादी कृष्ण

ना स्वामी, अय्यर का जन्म हुआ था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। मृणाल सेन, भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक, इनका जन्म 1923 में हुआ था। तो हमने बात की आज के इतिहास के बारे में, अब आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में और आज के वर्तमान में क्या चल रहा है ये भी जानेंगे। इतिहास और वर्तमान, जब हम इन दोनों को अच्छे से समझते हैं तो यही बातें हैं कि अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो उस वक्त उसका दिमाग संतुलित होता है, यानी कि वो फैसले सोच समझ कर करता है। लेकिन अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ बुरा घटित हुआ है, तो उस वक्त इंसान बिल्कुल तैश में आकर फैसला लेता है। वो सोचता नहीं है कि इस फैसले का उसके आगे के जीवन पर, या फिर वो किसी बड़े पद पर है तो हो सकता है किसी एक बड़ी संस्था के ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन और जब हम इतिहास की इन बातों को समझते हैं तो हम समझ पाते हैं कि जो भी हो रहा है, जो भी हो चुका है, वो किसी के ऐसे फैसले की वजह से हुआ है जो उसने सोच समझ कर लिया था या फिर बिना सोचे समझे लिया था। खैर, जो भी हो, कहते हैं कि आदमी खिलौना है, वो वक्त के हाथों बस चलता रहता है, वक्त उसे नचाता रहता है। लेकिन अगर वक्त को अगर मात देना का चाहे कोई, तो ज़रूरी है कि वो अपने मन पर, अपने दिमाग पर संयम रखे, ताकि वक्त कितना भी चाहे आदमी को अपने इशारों पर नचाने का, और वो चाहे कि आदमी तैश में आकर कोई फैसला ले ले, पर आदमी के मन पे अगर संतुलन है तो वो वक्त का खिलौना नहीं हो सकता। लेकिन बहुत ही कम आदमी ऐसे होते हैं जो अपने मन पर, अपने दिमाग पर संतुलन रख पाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग खिलौना बने रहते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
7: 8700001-4242।
8: आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। और अब तक हमने बहुत सी बातें की, बहुत सी जानकारियां आप तक पहुंची और इतिहास के पन्नों को भी हमने पलटाया। अब वक्त है वर्तमान को और भी बेहतर ढंग से जानने का, यानी कि समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। क्या कुछ चल रहा है वर्तमान में, देश दुनिया में, आइए आपको बताते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट ऑन सेल, 10,000 में खतियान, 6,000 में दिव्यांगता और 800 में आवासीय प्रमाण पत्र। दरभंगा, पश्चिम चंपारण और पटना में ऑपरेशन, तीनों मामलों में एक समानता, न दस्तावेजों का सत्यापन न पहचान की पुष्टि। सीबीएसई का रिजल्ट जारी, 85.20% बच्चे पास, ओएसएम में पहली बार, 98.66 लाख कॉपियां स्कैन हुई, 12वीं में पास होने

वाले 7 साल में सबसे कम। सप्लीमेंट्री में भी रिकॉर्ड, भागलपुर का रिजल्ट 85% रहा, राष्ट्रीय औसत से 10.75% पिछड़ा बिहार 21वें नंबर पर रहा। नया पैटर्न, सीबीएसई ने सबसे सख्त मार्किंग की, इसलिए इस साल 12वीं में पास होने वाले 7 साल में सबसे कम छात्र। पटना हाईकोर्ट में शिक्षकों की याचिकाएं मंजूर, शिक्षकों को मनचाहे जिले में पोस्टिंग का अधिकार होगा, पटना हाईकोर्ट ने कहा। बेली ब्रिज बनने का काम शुरू, 16 से बिछेगा गार्डर। विक्रमशिला सेतु पर काम शुरू हो चुका है, सक्रिय हो गई है सेना, सेतु के टूटे छोर को जोड़ने में लगेंगे 10 दिन। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 5 को पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट से गुहार, अब कोर्ट की निगरानी में करवाएं परीक्षा। बिहार कैबिनेट का संकल्प, 2030 तक नए वाहनों में 30% होंगे केवल इलेक्ट्रिक वाहन। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 समेत 19 नए एजेंडों को हरी झंडी। ईवी खरीदे 1 लाख पाए, महिलाओं को कार पर सब्सिडी देगा सरकार। मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट। पीएम की अपील पर सीएम सम्राट चौधरी का एक्शन मोड, मंत्री और अफसरों के काफिले की मनाही, वर्क फ्रॉम होम पर जोर। सम्राट का काफिला छोटा हुआ, हफ्ते में एक दिन, नो व्हीकल डे। अर्थव्यवस्था पर असर, रिजर्व बैंक ने चेताया, जंग चली तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। सेना एक दिन में 9000, माफ कीजिएगा, सोना एक दिन में 9000, चांदी 20000 महंगी हुई। ग्रे मार्केट का खतरा, 27000 तक महंगा हो सकता है सोना। सेना भर्ती कार्यालय कटिहार ने समय सारणी जारी की, अग्निवीरों की ऑनलाइन परीक्षा 1 जून से भागलपुर और पूर्णिया में। भारत की रॉकेट वुमेन की साड़ी अमेरिकी म्यूजियम में। भारत की रॉकेट वुमेन और इसरो वैज्ञानिक नंदिनी हरिनाथ की साड़ी अमेरिका के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में प्रदर्शित की गई है। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट हब की तैयारी, कार्यालय के साथ चार्जिंग, सीएनजी, डीजल, वर्कशॉप, पार्किंग समेत अन्य कई सुविधाएं होंगी। 62.83 करोड़ की लागत से राज्य के 6 जिलों में बनेंगे हाईटेक बस डिपो। पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में बनेगा बस डिपो। भागलपुर समेत 6 शहरों को मिलेंगी 55 इलेक्ट्रिक बसें। डीएम ने समीक्षा भवन में की बैठक, ऑनलाइन अफसरों को जोड़ा, दिए टास्क। सरकार का आदेश आते ही प्रशासन हुआ सक्रिय, ऑनलाइन बैठकों का दौर शुरू। डीएम ने पदाधिकारियों को दिया अहम निर्देश। पहल, गंगा में रो रो पोत सेवा शुरू होने से दबाव कम होगा। बाबूपुर घाट से गुजरेंगे वाहन, बरारी जानवी घाट के बीच जल्द शुरू होगी जहाज सेवा। एडीएम आज करेंगे निरीक्षण, बरारी पुल घाट पर एजेंसियों के साथ बैठक, जेटी और सड़क की जगह होगी तय। टीएमबीयू में हंगामा, रजिस्ट्रार और नोडल अफसर के बीच तीखी बहस, सड़क जाम। हावड़ा से राजगीर के बीच 17 मई से 18 जून तक चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन 8 जनरल, 4 स्लीपर और 2 एसएलआरडी कोच रहेंगी। बढ़ाई सख्ती, डीएम ने कहा, पोर्टल पर एक भी जमाबंदी लंबित नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा जवाबदेही तय होगी। जमाबंदी सत्यापन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारियों को अल्टीमेटम। वर्षों से लंबित फाइलों की समीक्षा शुरू, कागजात सही न मिलने पर भवन स्वामियों को थमाया जाएगा नोटिस। निगम का फैसला, फाइलों की जांच शुरू, अतिक्रमणकारियों से वसूला जुर्माना। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने पानी बढ़ने से पहले काम पूरा करने को कहा, कहा मजदूरों पर संकट हो सकता है। मानिक सरकार घाट की बात करें तो धसी रोड व गार्ड वाल बचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। रेलवे की जमीन खाली करने का नोटिस, रामधनी के आवास की बाउंड्री वॉल टूटी, बाउंड्री किसने तोड़ी पता नहीं, लेकिन जेसीबी चलते सबने देखा। कैबिनेट का फैसला, भरेगा खाली खजाना, सड़क से सिंचाई तक को मिलेगी रफ्तार। राज्य सरकार 72,901 करोड़ कर्ज लेगी, पिछले साल से 17,000 करोड़ ज्यादा। 1 करोड़ महिलाओं को 20,000 की दूसरी किस्त मिलना संभव। अब बात बिजनेस की, बड़ा मौका, हर 5 में से 4 सीईओ को

उम्मीद AI से बढ़ेगी देश की GDP, लेकिन 72% कंपनियां अभी ये टेक्नोलॉजी अपनाने में पिछड़ रही। इन्हें AI का निवेश बढ़ाना होगा। AI से भारतीय इकोनॉमी में 4 साल में 48 लाख करोड़ जुड़ सकते हैं, पर 35 करोड़ टैलेंट चाहिए। टैलेंट गैप, अभी केवल 30% कर्मी AI सक्षम, 2/3 कंपनियों की विदेशी फर्म से साझेदारी। डीजल हाइब्रिड कारों के दाम 18,000 तक बढ़ेंगे, राहत, पुराने साइलेंसर से निकलेगा सस्ता प्लैटिनम। भारी वाहनों में प्लैटिनम की खपत ज्यादा होती है। मुश्किल दौर में राहत, RBI सरकार को दे सकता है रिकॉर्ड डिविडेंड। अब बात क्रिकेट की। IPL चल रहा है। IPL के 97वें मैच में RCB ने KKR को 6 विकेट से हराया। लगातार 2 डक के बाद कोहली का शतक। किंग कोहली 0-0 को 100 में बदला। 193 के चेज में अकेले कोहली के 105 नाबाद रन। प्लेयर ऑफ द मैच कोहली, 60 गेंद पर 105 रन। टर्निंग पॉइंट रहा KKR की धीमी बैटिंग, 21 पर कोहली का कैच भी ड्रॉप किया। आज होने वाला है पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच। दूसरे घरेलू मैदान धर्मशाला में मुंबई की मेजबानी करेगा पंजाब। अब बात थाईलैंड ओपन की। थाईलैंड ओपन में सिर्फ 30 मिनट में जीते श्रीकांत, सिंधु भी अंतिम 16 में। बैडमिंटन में श्रीकांत ने 7 साल बाद लोहकीन येव को हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, 33 मिनट में जीत गई सिंधु। महिला T20 वर्ल्ड कप में 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 19 साल की लूसी को दिया मौका। फुटबॉल में बेंटो का आत्मघाती गोल। रोनाल्डो का सऊदी प्री लीग जीतने का इंतजार बढ़ा। MLS में सबसे अमीर मेसी, 28 टीमों से ज्यादा अकेले उनकी कमाई। फुटबॉल में मेसी की सैलरी दोगुनी, 235 करोड़ का पैकेज। खुफिया रिपोर्ट का दावा, ट्रंप का दावा गलत। होर्मुज में अभी ईरान का दबदबा कायम। ईरान की मिसाइल क्षमता बरकरार, 70% जखीरा व 90% अंडरग्राउंड नेटवर्क बचा। सड़क सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भारत में लेन ड्राइविंग जैसा कुछ नहीं, सड़क दुर्घटनाओं की ये बड़ी वजह है। 1% से भी कम सार्वजनिक वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस। देश में हर रोज 546 लोगों की मौत सड़क हादसे में। तमिलनाडु में सरकार ने विश्वास मत जीता, विजय को अन्नाद्रमुक समेत 144 का समर्थन। अर्जेंटीना में शिक्षा बजट घटा, सड़कों पर उतरे 17 लाख छात्र। अमेरिका में 10,000 छात्र जांच के दायरे में, अधिकांश भारतीय सेल कंपनियों और फर्जी नौकरी से अमेरिका वीजा पाने का खेल। कैबिनेट का फैसला, 14 खरीफ फसलों का MSP बढ़ा। धान का समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़ाकर 2,441 रुपये किए। ये थे आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब फिलहाल घड़ी की सुई मुझसे कह रही है कि अब वक्त हो चुका है कि मैं आपसे इजाज़त लूं, लेकिन जाने से पहले कुछ ख़ास बात की। अपना और अपने अपनों का रखे ख़ास ख्याल और अपने आप से करें ढेर सारा प्यार। साथ ही आप जहां भी थोड़ा भी वक्त बिताते हैं, वहां की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। कुछ भी खाकर कचरा ना छोड़ें। अगर पास में डस्टबिन दिखे तो डस्टबिन में डालिए, वरना अपने पास रखकर जहां डस्टबिन दिखे वहाँ उस कचरे को फेंक दीजिए। लेकिन इधर उधर कचरा फैलाना बहुत गलत बात है होती है। और अगर आप साफ़ सुथरा रखते हैं तो ना केवल आप अपने आप को, अपने घर वालों को, बल्कि पूरे समाज को स्वस्थ रखते हैं। इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें, उसके पहले कुछ जरूरी संदेश एवं

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
4: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। आइए सुने दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और खबरनामा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स A20 लचीला नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और UAE की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत

0: दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: रिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
3: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
6: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
7: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से

फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया।

0: बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर 3 निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल।

0: life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and NewsOnAir app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलों नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केटकेओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा तातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहदा अरब अमारात के उमूरे खारिजा के वजीरे मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
3: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकतदार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे जिसका मौजू ब्रिक्स @20 इस्तेहकाम इख्तिरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में असलाहत के मौजू पर एक और इजलास मुनक़िद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वामे मुत्तहदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड UCC बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम असेंबली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनक़िद होगा जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकानी असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वजा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाजे किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख्ताम के साथ आसाम उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है जिसमें खाम चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के जुमरे से ममनू के जुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा और एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत

0: यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को बरामद होने वाली चीनी पर नाफिज नहीं होगी ताकि दीगर ममालिक की खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक जरूरियात को पूरा किया जा सके। वो खेप जो बरामद के लिए फिजिकल पाइपलाइन में है उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू प्याज फल सब्जियों गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती नकलो हरकत पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। ये पाबंदियां साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से आयद की गई थीं। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने असातिज़ा के तकर्रुरात म्युनिसिपल तकर्रुरात और इमदाद बाहमी खिदमात तकर्रुरात खपलों से मुतालिक मामलों को सीबीआई के सुपुर्द करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने उन सभी अफराद की खिदमात को खत्म कर दिया है जिनका सबुकतोशी के बाद टीएमसी हुकूमत की जानिब से दोबारा तकर्रुर किया गया था। तफसील हमारे नामा निकाय से।
1: किसानों और ताजिरों को बड़ी राहत देते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने जरई एशिया की दीगर रियासतों में बरामदात पर आयद पाबंदियों को हटा लिया है। जरई मार्केटिंग के महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आलू प्याज सब्जियां फल गजाई अजनास और तिलहन की अब रियासती सरहदों के पार बिला रुकावट हमलो नकल की जा सकती है। जिला इंतजामिया पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुकाम को इस हुक्मनामे के नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल नबन्ना में बताया कि इस फैसले से छोटे और हाशिया बरदार किसानों और ताजिरों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को अब उनकी पैदावार का वाजिब दाम मिलेगा। वजीर आला ने यह भी इंतबाह दिया कि जरई अशिया से लदी गाड़ियों को अगर बैन रियासती सरहदों पर गैर जरूरी तौर पर रोका गया या हिरासा किया गया तो अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से जरई बरामदात में आसानी पैदा होने और मगरबी बंगाल के किसानों और ताजिरों को पेश आ रही मुश्किलात में कमी आने का इम्कान है। कोलकाता से संदीप पौन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: हुकूमत ने मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की है। अमले और तरबियत के महकमे की जानिब से जारी किए गए सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना की तकर्रुरात से मुतालिक कमेटी ने जनाब सूद की मुद्दत कार को जांच एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर इस महीने की 24 तारीख से आगे तौसी देने को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अबू जहबी का दौरा करेंगे जो उनके 5 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहिदा अरब अमारात नेदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे और इटली जाएंगे। वजीर आजम का ये दौरा जुमे से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सी बी जॉर्ज ने बताया कि 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दोतरफा उमूर खासतौर पर तवानाई के शोबे में तआवुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये जनाब मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान की सिर्फ 5 महीनों में दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक कल जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम 40 लाख से ज्यादा भारतीयों की फलाह बहबूद भी इस बातचीत के एजेंडा में शामिल होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खित्ते की अहम तरीन तवानाई शराकत दारी रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त भारत को खाम तेल फराहम करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है जो मुल्क की कुल जरूरत का तकरीबन 11% पूरा करता है। रकीक कुदरती गैस के मामले में भारतीय कंपनियों ने अबूजबी की ADNOC गैस के साथ तवील मुद्दती सप्लाई मुआहदे किए हैं जिनकी मजमू मकदार 4.5 मिलियन टन है। मुत्तहिदा इमारात गुज़श्ता 25 बरसों के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तजारती साझेदार और गैर मुल्की सरमाकारी का 7वां बड़ा जरिया है। ऐसे में जबकि मगरबी एशिया मौजूदा वक्त में अपने सबसे हंगामा खेज दौर से गुजर रहा है, अबूजबी में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जुमे की मुलाकात को दोनों मुल्कों के लिए इस्तेहकाम और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक आजम के तौर पर देखा जा रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटे में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से 60 लोग हलाक हुए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों का नोटिस लिया है और हुकाम को कहा है कि वो मुतासरा लोगों की मदद के लिए हर जरूरी इकदाम करें। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
1: भदोही जिले में सबसे ज्यादा 15 हलाकतें हुई हैं, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर

0: इलाज हैं। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद हलाक हुए हैं। सबसे ज्यादा अमवात गरज चमक, दीवारों और पेड़ों के लोगों और गाड़ियों पर गिरने की वजह से हुई हैं। रियासत के कई इलाकों में कल अचानक मौसम में तब्दीली आ गई और मुतादिद जिलों से बिजली के खंभों और पेड़ों के गिरने की खबरें मिली, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी और रोड ट्रैफिक में रखना पड़ा। बारिश के साथ होने वाली ज्यालाबारी से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान के दूरदराज इलाकों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर रहने की पेशगोई की है। मशरकी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में भी गर्म लहर की सूरत हाल रहेगी। मौसमियाती महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो रोजा मुजाकरात के लिए कल शाम बीजिंग पहुंच गए। मुजाकरात के दौरान ईरान जंग, तवानाई के आलमी बहरान, तजारती कशीदगी, ताइवान और मसनूई जहानत जैसे मौजूदात एजेंडा में शामिल रहने की तवक्को है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE पहुंचे और उन्होंने मुल्क के सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इस बयान में मजकूरा मीटिंग को इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीखी कामयाबी बताया गया है, हालांकि कामयाबी से मुतालिक तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जानिब UAE ने इसराइली वजीर आजम के दौरे से मुतालिक रिपोर्टों को मुस्तरद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE की वजारत खारिजा ने कहा कि रिपोर्ट्स गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ UAE के ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि खुले हैं और सरकारी तौर पर ऐलान करदा अब्राहिम मुआहिदे पर मबनी है। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई है। ईरान ने मजकूरा रिपोर्ट पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने खलीजी ममालिक को इसराइल के साथ तावुन करने पर खबरदार किया और कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल का तावुन करने वाले किसी भी मुल्क को जवाबदेह ठहराया जाएगा। IPL क्रिकेट में कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट से जीत के दौरान विराट कोहली ने तारीख रकम करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। कोहली ने 60 गेंदों में बगैर आउट हुए 105 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ये उनकी नवी IPL सेंचुरी थी, जो कि टूर्नामेंट की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा सेंचुरी है। इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली ने T20 मैचों में 14,000 रन भी मुकम्मल किए। इस तरह वो इस संगे मील को हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस संगे मील तक सबसे तेजी के साथ पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस IPL सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 मैचों में जीत हासिल की है और वो प्ले ऑफ में पहुंचने के बेहद करीब है। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
0: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुल्क में कोयले से गैस बनाने से मुताल्लिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने से मुताल्लिक खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी 6 सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, मोदी सरकार ने कोयले पर मबनी गैस की पैदावार के मंसूबे को मंजूरी दी, खुद किफालत में मदद मिलेगी। CBSE 12वीं जमात के नतायज जारी होने से मुताल्लिक खबर सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने इस हवाले से सुर्खी लगाई है, CBSE की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 85.20 तलबा कामयाब हुए, लड़कियां आगे रहीं। तमिलनाडु में 144 मेंबरान के साथ विजय ने अक्सरियत साबित की, इसी अखबार ने इस खबर को भी अव्वलियत के साथ पहले सफ़े पर शाये किया है। सोने और चांदी की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी में 15% इजाफे किए जाने से मुताल्लिक खबर अहमियत के साथ अखबारात में शाये की गई है। इस हवाले से रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कि हुकूमत दीगर

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट उपचुनाव की मतगणना जारी। जदयू के कन्हैया प्रसाद और राजद के सोनू राय समेत 6 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं को प्रति वाहन 1,00,000 रुपए का अनुदान देगी। और पटना, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार समेत

0: प्रदेश के 6 जिलों में आज होगा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सितंबर 2026 या अगले आदेश तक खांड, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार चीनी निर्यात नीति को प्रतिबंधित से निषिद्ध कर दिया गया है। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL तथा TRQ कोटा, अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। बिहार विधान परिषद की भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट के लिए उपचुनाव की मतगणना आज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आरा स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस सीट पर जदयू के कन्हैया प्रसाद तथा राजद के सोनू राय के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इसके अलावा 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। 12 मई को मतदान कराया गया था। गौरतलब है कि यह सीट पूर्व MLC राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई है। राज्य सरकार महिलाओं को इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन खरीदने पर प्रति वाहन 1,00,000 रुपए का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि दो पहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में भी महिलाओं को अनुदान दिया जाएगा। साथ ही सभी गाड़ियों के निबंधन दर में 50% की राहत दी जाएगी।
1: परिवहन विभाग का एजेंडा था जिसमें मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना का गठन और उसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए कुल 110 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 की स्वीकृति दी गई अगले एजेंडा में।
0: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों ने भी अपने काफिले के आकार में कमी की है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रत्येक शुक्रवार को सार्वजनिक वाहनों या ई वाहनों के जरिए कार्यालय पहुंचने की अपील की है। तेल कंपनियां राज्य में अब 10,00,000 से अधिक आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं देगी। इस संबंध में IOCL, BPCL और HPCL कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं के निबंधित मोबाइल पर यह संदेश भेजा जा रहा है। बिहार राज्य LPG वितरक संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे संदेश में 7 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया मांगी गई है। यदि उपभोक्ता आपत्ति नहीं जताता है तो इन सभी की गैस सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दरभंगा जिले में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को हस्तांतरित किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री जिले के शोभन में एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही वे DMCH में चल रहे कार्य की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री के दरभंगा आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए

0: लाभार्थियों को 30 मई तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता ने पटना में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि गरीब परिवारों के वृद्ध, निःशक्त, विधवा और कुष्ठ पीड़ित लोगों को विभिन्न योजना का लाभ लेने के लिए यह प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इससे योजनाओं से वंचित पात्र लाभुकों को जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और गणना का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जनगणना कार्य निदेशालय की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि 31 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया के तहत प्रगणक नागरिकों से 33 प्रकार के सवालों की जानकारी लेंगे। श्रीमती रंजीता ने लोगों से जनगणना के नाम पर साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील भी की है।
1: कोई भी जनगणना करने आपके घर आते हैं तो वो आपसे वित्तीय जानकारी या किसी प्रकार का दस्तावेज उसकी मांग नहीं करते। तो अगर कोई भी इस प्रकार का मैसेज आता है या कोई व्यक्ति आपको इसके लिए संपर्क करता है तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है और साइबर हेल्पलाइन 1930 उस पर संपर्क कर सकते हैं या जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1855 उस पर संपर्क कर सकते हैं। नजदीकी थाने में इसकी सूचना दे सकते हैं या जिला प्रशासन स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में इसकी सकते हैं।
0: जनगणना निदेशक की आकाशवाणी समाचार के साथ इस पूरी बातचीत को प्रादेशिक समाचार एकांश पटना की ओर से प्रसारित सामयिक चर्चा के तहत सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम शनिवार शाम 7:52 से प्रसारित किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पटना, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में आज ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत शाम 7:00 से 7:10 तक पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट किया जाएगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। किशनगंज के जिलाधिकारी विशाल राज ने लोगों से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में सहयोग की अपील की है।
5: शाम को 7:00 सायरन बजने के साथ साथ बिजली को कट कर दिया जाएगा, तो सभी नागरिकों से अपील है कि इस ब्लैकआउट की एक्सरसाइज में आप लोग संजीदगी से इसमें हिस्सेदारी लें और लाइट कट होने के बाद बैकआउट के दौरान पूरे शहर में अंधेरा होना चाहिए, उस उद्देश्य की पूर्ति आप लोग सभी लोग मिलके करें। प्रयास है ये, अभ्यास है ये, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
0: मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार सहित 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
6: दिनांक 14 मई, राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मई महीने में प्रदेश में अब तक सामान्य से 170% अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस बीच प्रदेश के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ ही

तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। रोहतास के डेहरी का अधिकतम तापमान 38.8 और पटना का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 3 जून को पटना और अन्य जिलों में चयनित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में होगा। असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि की 173 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में 15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिला के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा अमृता ने कुछ देर के लिए पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभाई। बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने अमृता को यह अवसर दिया। इस दौरान अमृता ने पुलिस पदाधिकारी बनकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। भागलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जनगणना कार्य में लापरवाही के मामले में 118 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इधर जिले में घरेलू गैस आपूर्ति में अनियमितताओं को लेकर छापेमारी अभियान के दौरान 4 गैस एजेंसियों के गोदामों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शिवहर जिला कृषि कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक विजेंद्र कुमार गिरी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी एक महिला से खाद दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर रिश्वत के रूप में रुपए ले रहा था। मधुबनी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम ने स्वीडन में आयोजित पैरा स्विम ओपन फाल्केनबर्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। शम्स ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए यह पदक हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने अक्टूबर में जापान में आयोजित होने वाले एशियाई पैरा गेम्स की 3 स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई। इसी खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 प्रस्ताव किए गए स्वीकृत। कैबिनेट का फैसला, 2030 तक बैटरी चालित वाहनों की 30% हिस्सेदारी करने की योजना। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, भाषाओं की खामोशी से बौद्धिक विरासत ही नहीं जिंदगी भी खतरे में। बुजुर्गों से संवाद उनके किस्से देंगे नया जीवन। प्रभात खबर सीबीएसई 12वीं के नतीजे से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखता है, साइंस में पटना के रोहन, आर्ट्स में अतुल और कॉमर्स में गया की माही कुमारी स्टेट टॉपर। आज अखबार ने लिखा है, बिहार के 8 जिलों में बनेंगे नए हाईटेक थाना भवन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट उपचुनाव की मतगणना जारी। जदयू के कन्हैया प्रसाद और राजद के सोनू राय समेत 6 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक चरपहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं को प्रति वाहन 1,00,000 रुपए का अनुदान देगी। और पटना, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में आज होगा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है। लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए आनंद लें फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नगमे नए पुराने का। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना गीतकार समीर अंजान का लिखा। इस गीत को आवाज़ दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। फिल्म है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

अगला गाना हमने लिया है फिल्म अंदाज अपना अपना से। आवाजें हैं आशा भोसले एसपी बाला सुब्रमण्यम की, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है तुषार भाटिया का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म जोधा अकबर से। आवाजें हैं सोनू निगम और मधुश्री की, संगीत तैयार किया है AR रहमान ने, बोल हैं जावेद अख्तर के।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं श्यामानंद झा। आइए आरंभ में इनकी आवाज में सुने मीराबाई की ये रचना।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: आपका पुनः स्वागत है सुगम संगीत कार्यक्रम में। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं श्यामानंद झा। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। श्रोताओं, आइए अब सुने ब्रह्मानंद की ये रचना।

0: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM 2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुने बाल स्वरूप राही की ये रचना श्यामानंद झा की आवाज में।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार थे श्यामानंद झा। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रातः के 10 बज चुके हैं, आइए अब आनंद ले फिल्मी गीतों के कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए गीता दत्त को सीआईडी फिल्म के इस गीत के लिए। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

आइए अब सुने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म है जोएल थिव, संगीतकार है सचिन देव वर्मन।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर, अमित कुमार और साथियों को आखिर क्यों फिल्म के इस गीत में। इस गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने, अल्फाज हैं इंदिवर के।

श्रोताओं, अब संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का गाना फिल्म ब्लैकमेल से। आवाज है किशोर कुमार की, गीतकार राजेंद्र कृष्ण।

सुनिए मोहम्मद रफ़ी को ब्रह्मचारी फिल्म के इस गीत के लिए। संगीतकार शंकर जयकिशन, अल्फाज हैं SH बिहारी के।

अगला गाना फिल्म वक्त से, संगीतकार रवि, गीतकार साहिर लुधियानवी, आवाज़ है आशा भोसले की।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए अब सुने नाटक सावित्री का संकल्प। लेखिका हैं श्रीमती सांत्वना साह, प्रस्तुतकर्ता अरुण कुमार पासवान। श्रोताओं, ये नाटक आप सुनेंगे एक अंतराल के बाद।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: तुमने मेरे कुल और कोख की रक्षा कर ली। हे जगदम्बे, तुम्हारी आराधना के फल की तरह पुत्री सावित्री ने मेरी कुक्षी से जन्म ग्रहण कर अपूर्व संस्कार प्राप्त किए हैं। माँ, अब वो किशोरी वय को प्राप्त कर चुकी है। उसकी पूजा, उपासना, साधना ने उसमें ऐसे संस्कार भर दिए हैं कि वो सद्य तुम्हारी प्रतिमूर्ति लगती है। माँ माँ, मैं चिंतित हूँ कि अपनी देवी स्वरूपा पुत्री का विवाह किससे करूँ। तुमने मुझे पुत्र न देकर स्वयं पुत्री बनकर सावित्री के रूप में मुझे धन्य कर दिया। माँ, अब मैं तुम्हारी शरणागता हूँ। महाराज को ऐसी प्रेरणा दो माँ कि वे स्वयंवर का आयोजन करें और मेरी सावित्री अपने मनोनुकूल पति का वरण कर सके। माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। माँ,
3: आज महारानी के स्वर में ये करुणा कैसी?
2: आर्य, मैं पुत्री सावित्री के विवाह के लिए चिंतित हूँ।
3: महारानी, माँ जगदम्बे ने जब पुत्री सावित्री को तुम्हारे गोद में जन्म दिया है तो उसके लिए विवेकी और सत्यनिष्ठ आचरणवान वर को भी जन्म दिया होगा। आवश्यकता है उस वर के संधान की। तुम चिंतित न हो भद्रे, मैं आदरणीय कुल पुरोहित से आगामी शुभ तिथि को सावित्री के विवाहार्थ स्वयंवर की घोषणा का अनुनय करता हूँ।
4: प्रणाम माते।
2: आयुष्मती बनो पुत्री, आओ अपने पिताश्री के चरण स्पर्श करो।
4: पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पितु ही परमं तपः, पितृ प्रीति माम पन्ने, प्रियंते सर्व देवता। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री।
3: मैं अपनी पुत्री सावित्री के ज्ञान आचरण से प्रसन्न हुआ। पुत्री, आज तुम जो वर मांगोगी वो देकर मैं संतोष का अनुभव करूंगा।
4: पिताश्री, आपका आदेश है तो मैं वर मांगती हूँ।
3: निर्भय होकर मांगो बेटी।
4: माते, मैं पूज्य पिताश्री से यही वर मांगती हूँ कि मुझे अपना वर स्वयं ढूंढने की अनुमति दी जाए।
2: हाँ, ये तुमने क्या मांग लिया बेटी। तुम पुष्प की पंखुड़ियों की तरह कोमल, तुम्हारे पाटल सदृश सुकोमल चरण, तुमने ये संकल्प क्यों लिया बेटी? महाराज, सावित्री को ऐसी अनुमति देकर इसे कष्ट मत दीजिए।
5: नहीं महारानी, तुम्हारा विकल होना व्यर्थ है। संभव है ये भी माँ जगदम्बे की एक प्रेरणा हो और इसी में सावित्री के कल्याणमय भविष्य का मंगलमय स्वरूप हो। चाहे जो भी हो, मैंने पुत्री सावित्री को वचन दिया है, इसलिए सावित्री अपने संकल्प की सिद्धि के लिए अवश्य जाएगी।
2: महाराज, आपने ये क्या किया?
4: माँ, मैं तुम्हारी संतान हूँ, मुझ पर भरोसा करो। माँ, मैं संपूर्ण आर्यवर्त का भ्रमण अपनी बुद्धिमत्ता से करूंगी। आपके आशीर्वाद और माँ जगदम्बे की कृपा रही तो मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करूंगी। माँ,
5: महारानी, माँ जगदम्बे से प्रार्थना करो कि पुत्री सावित्री की साधना सफल हो। मैं अपने पितृतुल्य महामंत्री सहित राज्य के अन्य अनुभवी महामात्यों और पुत्री सावित्री की सखियों के साथ इस आर्यावर्त भ्रमण की व्यवस्था करता हूँ।

0: महाराज की जय हो। महाराज, देवलोक से देवर्षि नारद पधारे हैं, मद्रराज अशुपति का दर्शन चाहते हैं।
1: जाओ, उन्हें आदर पूर्वक दरबार में ले आओ।
0: जो आज्ञा महाराज।
2: नारायण नारायण, महाराज की जय हो।
1: प्रणाम मुनिवर।
2: दीर्घायु भव, यशस्वी भव।
1: आसन ग्रहण करें मुनिवर।
2: राजकन्या नहीं दिख रही राजन, जिसे आपने माता सावित्री की 18 वर्ष

0: वर्षों तक घोर तपस्या के पश्चात प्राप्त किया था।
1: मुनिवर, मैंने आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा है। सर्वगुण संपन्न सावित्री के दिव्य तेज को देखकर सब यही कहते हैं कि ये मानवी नहीं देव कन्या है। शायद यही कारण है कि अब तक कोई राजा या राजकुमार उसका वरण नहीं कर सके।
0: लेकिन राजन, वो दिव्य सुंदरी है कहां? उसे मेरे समक्ष लाइए, मैं उसे आशीर्वाद देना चाहता हूं। नारायण नारायण।
1: मुनिवर, इस समय वो सुयोग्य वर की तलाश में वृद्ध और बुद्धिमान मंत्रियों सहित आर्यावर्त भ्रमण के लिए निकली हुई है।
2: महाराज की जय हो। राजपुत्री अभी अभी यात्रा से लौटी हैं। महाराज के दर्शन की अनुमति चाहती हैं।
1: आज्ञा है।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: प्रणाम पिताश्री। प्रणाम मुनिवर। समस्त गुरुजनों को भी मेरा प्रणाम।
0: आयुष्मती भव,
1: दीर्घायु भव।
0: राजन, आपकी यह कन्या वास्तव में देव कन्या से प्रतीत होती है, क्या इसका उद्देश्य पूरा हुआ?
1: बेटी सावित्री, देवर्षि नारद के प्रश्नों का उत्तर दो, जिससे मेरी उत्कंठा भी पूरी हो।
3: मुनिवर, शाल्व नरेश द्युमत सेन सत्यवादी और धर्मात्मा राजा थे। उनकी आंखों की ज्योति चली गई। शत्रुओं के आक्रमण ने उनसे उनका राज्य छीन लिया। तब से वे अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन चले गए और वहां उत्तम नियमों का पालन करते हुए तपस्या में लग गए। उन्हीं के पुत्र सत्यवान हैं, जो राज दरबार में जन्मे और तपोवन में पले बढ़े। वे ही सर्वथा मेरे योग्य हैं, अतः मैंने उन्हें ही अपना वर चुना है।
0: नारायण नारायण। राजन, ये तो बड़ी खेद की बात है। सावित्री ने वर की चुनाव में भारी भूल की है।
3: वो कैसे मुनिवर? सत्यवान माता पिता के प्रति भक्ति रखने वाला, तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और शूरवीर है। वो उत्तम गुणों से युक्त है महाराज।
0: हाँ पुत्री, उस राजकुमार की माता पिता सदा सत्य बोलते थे, इसीलिए राज पुरोहितों ने उनका नाम सत्यवान रख दिया। द्युम्नत सेन का वह वीर पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के सदृश बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी की भांति क्षमाशील, रंतिदेव के समान दानी, उसी नरपुत्र राजा शिवी के समान अतिथि भक्त, चंद्रमा के समान नयनाभिराम और अश्वनी कुमारों के समान रूपवान है। वह जितेंद्रिय, विनयी, पराक्रमी, सत्य प्रतिज्ञ, मिलनसार, ईर्ष्या रहित, लज्जाशील और तेजस्वी है।
1: मुनिवर, आपने तो उसे समस्त गुणों का भंडार बता दिया, फिर पुत्री सावित्री ने चयन में भूल कैसे की?
3: हाँ मुनिवर, उस साधारण से दिखने वाले असाधारण व्यक्तित्व का धनी सत्यवान ही मेरे लिए योग्य वर है। फिर आपने शंका क्यों व्यक्त की?
0: राजन, दोष तो उसमें एक ही है, जिसने उसके समस्त गुणों पर पर्दा डाल दिया है। दोष भी साधारण नहीं है, उसे किसी भी प्रयत्न के द्वारा मिटा देना असंभव है।
1: वो क्या मुनिवर, बताइए ना।
0: राजन, आज से ठीक एक वर्ष बाद उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, उसे देह त्याग करना पड़ेगा।
3: नहीं, ये नहीं हो सकता।
1: नहीं मुनिवर, नहीं। पुत्री सावित्री, लौट जा बेटी, पुनः अपनी यात्रा आरंभ कर और किसी दूसरे योग्य वर का वरण कर। सत्यवान के एक ही दोष ने उसके समस्त गुणों को ढक दिया है। उसकी आयु थोड़ी है बेटी, वो एक ही वर्ष में शरीर त्याग देगा।
4: पिताजी, मैं आर्य पुत्री हूँ। इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाली हर कन्या अपने लिए एक ही बार वर का वरण करती है। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा गुणहीन, मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब दूसरे पुरुष का मैं वरण कर नहीं सकते।
1: पुत्री, एक बार फिर से सोच लो।
4: पिताजी, पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से प्रकट किया जाता है, और जो वाणी से प्रकट किया जाता है उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण किया जाता है।

0: स्वामी, ना जाने हमारे क्या क्या प्रारब्ध है। हमसे जितना बन पड़ा हमने पूजा की, सेवा की, और इस वृद्धावस्था में नेत्रहीन होकर अपने पुत्र सत्यवान पर भार बन गए हैं हम।
1: दैव जाने हमारे पूर्व जन्म के किसी पाप का दंड अब तक पूर्ण हुआ या नहीं।
0: मुझसे अब सत्यवान का कष्ट सहा नहीं जाता स्वामी। इच्छा होती है कि अपने प्राण त्याग दूं।
1: नहीं भद्रे, नहीं। हो सकता है इन्हीं यातनाओं में कहीं मंगल कारक छिपे हों। ईश्वर की महिमा अपरंपार है।

0: राजर्षि, मैं मद्र नरेश अश्वपति कुटुंब परिवार सहित आपकी पर्णकुटी में उपस्थित हुआ हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करें।
1: प्रणाम राजर्षि।
2: तपोवन की इस पवित्र कुटिया में आप सबों का स्वागत है। आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अगर उचित समझें तो आप अपने आने का उद्देश्य बताएं।
0: राजर्षि, मेरी पुत्री सावित्री यहाँ उपस्थित है। आर्य पुत्र सत्यवान के लिए आप धर्मानुसार उसे पुत्र वधु के रूप में स्वीकार करें।
2: राजन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नेत्रहीन किसी तरह फल मूल खाकर उत्तम नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन बसर कर रहा हूँ। मैं कभी राजा था, पर शत्रुओं ने मौका पाकर मुझसे मेरा राज छीन लिया। तभी से मैं वन देवी और वन देवता की शरण लेकर यहाँ अपने जीवन के अंतिम क्षणों को व्यतीत कर रहा हूँ।
3: हमें इन सारी बातों की जानकारी है महात्मन।
4: फिर भी राजन, महलों में दास दासियों के बीच पली बड़ी सुंदर सुकुमारी कन्या को लेकर आप मेरे पास आए हैं।
2: राजन, आपकी कन्या सर्वगुण संपन्न परम सुंदरी है। इसे किसी राजा महाराजा के भवन की शोभा ही रहने दें।
4: मेरा पुत्र सत्यवान दिन रात हमारी सेवा में रहता है। वन से समीधा जुटाना, फलों का संग्रह करना, आतिथ्य सत्कार करना, बस यही तो उसकी दिनचर्या है। भला ऐसे साधारण सी पुरुष के साथ राजकुमारी सावित्री कैसे सुखी रह सकती है?
2: हम नेत्रहीन अपने पुत्र पर स्वयं भार हैं, फिर आपकी पुत्री सावित्री को अपने कष्टों का भागी क्यों बनाए महाराज?
3: ऐसा न कहिए महाराज।
0: हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। सावित्री ने स्वेच्छा से आर्य पुत्र सत्यवान को अपना पति स्वीकार किया है और वो अपने निर्णय पर अटल है।
2: अब जैसी आपकी इच्छा राजन, आपका उद्देश्य पूरा हो और पूरा हो सावित्री का संकल्प।

मैं सावित्री संपूर्ण जगत के प्राणी वन देवता वन देवी धरती आकाश सूर्य चंद्रमा अग्नि वरुण पूज्य माता पिता गुरुजन परिजन सबको साक्षी मानकर आर्य पुत्र सत्यवान को अपना पति वरण करती हूँ।

0: पिताजी
1: पिताजी पिताजी, ये कैसी आवाज है? ये कैसा संकल्प है?
2: घबराओ नहीं बेटे, विचलित मत हो। तुमने जो सुना वह मत्र नरेश अश्वपति की कन्या सावित्री का

0: संकल्प था, मैंने उसे पुत्र वधू के रूप में स्वीकारा है।
1: पिताजी, यदि आपकी और माताजी की आज्ञापूर्ण स्वीकृति है तो मैं धन्य हुआ। सौभाग्यशाली सावित्री के पति होने का गौरव मुझे आनंदित कर रहा है पिताजी।

0: Nat.
1: Aprie.
0: समस्त
1: गुरुजन
0: परिजन
1: देवी देवताओं
0: को हमारा प्रणाम स्वीकार हो।
2: सौभाग्यशाली आयुष्मान
3: राजर्षि, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे बहुत बड़े ऋण से उऋण होने का अवसर दिया। अब मुझे आज्ञा दें ताकि मैं कुटुंब सहित मद्र देश को प्रस्थान कर सकूं।
4: जैसी आपकी इच्छा राजन।
0: पिताजी, आप मेरे ये राजसी वस्त्राभूषण ले जाएं। अब मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। अब तो गेरुआ वस्त्र और वलकल ही मेरे वस्त्र हैं। और सेवा, संयम, सद्गुण तथा विनय ही मेरे आभूषण हैं।
5: बेटी, सास ससुर की सेवा तन मन से करना, पति को अपने प्राणों से भी प्रिय मानना, अपने पितृकुल की रक्षा करना बेटी, दोनों कुलों का गौरव बढ़ाना।
0: ऐसा ही होगा माँ, ऐसा ही होगा।

0: नारायण नारायण। आज से ठीक एक वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी। वह देह त्याग देगा, वह देह त्याग देगा, वह देह त्याग देगा।
1: नहीं भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने 3 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, आंखों में मेरी नींद नहीं है। सुबह सत्यवान को मैं अकेले वन नहीं जाने दूंगी, मैं भी उनके साथ चलूंगी।

0: सावित्री, आज बड़े सवेरे ही तुमने अपना प्रातःकृत्य समाप्त कर लिया है। अग्नि में हवन का कार्य भी संपन्न कर लिया, समस्त आत्मीय स्वजन का आशीर्वाद भी ले लिया। क्या बात है सावित्री, आज तो तुम अपूर्व सुंदरी दिख रही हो। तुम्हारी आज की छवि स्वर्ग से उतरी अप्सरा सी दिखाई देती है। लगता है समस्त वन देवियों ने मिलकर स्वयं तुम्हारा श्रृंगार किया है।
1: स्वामी, आज मुझे भी आपके साथ वन जाना है।
0: प्रिय, वन का रास्ता कठिन है। तुम पहले कभी वन गई नहीं, इधर लगातार व्रत और उपवास ने तुम्हें दुर्बल बना दिया है, फिर पैदल कैसे चलोगी?
1: उपवास से मुझे कोई कष्ट और थकावट नहीं है नाथ, चलने के लिए मन में उत्साह है, इसलिए रोकिए मत।
0: यदि ऐसी बात है प्रिय, तो मैं ना नहीं करूंगा, किंतु माता जी और पिताजी से आज्ञा तो ले लो।
1: माते, मेरे स्वामी फल मूल लाने वन जा रहे हैं, यदि आप हमें आदेश दें तो मैं भी इनके साथ वन हो लूं।
2: प्रिय, सावित्री जब से इस घर में आई है तब से आज तक किसी बात की याचना की हो ऐसा मुझे ज्ञात नहीं, अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए।
1: अच्छा बेटी, तू जा, मार्ग में सत्यवान को संभाल कर रखना, और हाँ, संध्या होने से पूर्व शीघ्र ही लौट आना। मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं पति सहित सकुशल वापस लौट सकूं।

0: अब बहुत हो चुका स्वामी।
1: हाँ।
0: नीचे आ जाएं।
1: हाँ।
0: परिश्रम के कारण पसीने से तर बतर दिख रहे हैं आप।
1: हाँ प्रिय, मैं जाने क्यों सिर में बहुत दर्द हो रहा है।
0: आइए ना, कुछ देर आराम कर लीजिए।
1: प्रिय, सर फटा जा रहा है, पूरा शरीर टूट रहा है, ये कलेजे में भी पीड़ा हो रही है।
0: घबराइए नहीं, मैं हूं ना आपके साथ।
1: इस समय मैं अपने आप को काफी अस्वस्थ पा रहा हूं। ऐसा जान पड़ता है कि कोई मेरे मस्तिष्क को भर्चियों से छेद रहा है। अब तो बिल्कुल शक्ति नहीं मिल रही है। कल्याणी, कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूं। मुझे सहारा दो सावित्री।
0: हाँ।
1: मुझे।
0: हाँ।
1: अरे वो देखो
0: क्या
1: वो दूर क्षितिज पर सांवले रंग का सुंदर शरीर वाला, लाल वस्त्र धारण किए वो दिव्य पुरुष, उसके माथे पर मुकुट है, वो अत्यंत तेजस्वी है, साक्षात सूर्यदेव जान पड़ता है। देखो देखो देखो, उसके एक हाथ में पाश है, वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा है। वो मेरे ही पास आ रहा है। ओ सावित्री,

0: हे ईश्वर, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आप कौन हैं? आप तो कोई देवता जान पड़ते हैं, क्योंकि आपका शरीर मनुष्यों का सा नहीं है।
1: सावित्री, तू तपस्विनी है, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं यमराज हूं। तेरे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः इसे लेने आया हूं।
0: मेरा प्रणाम स्वीकार हो भगवन।
1: कल्याण हो।
0: मैंने सुना है कि जीवों को लेने आपके दूत आया करते हैं, पर आप स्वयं कैसे पधारे?
1: सत्यवान परम धर्मात्मा है देवी, वो दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, अतः मैं स्वयं इसके जीव को लेकर जा रहा हूँ।
0: मेरी ओर देखिए भगवन, मेरी आयु देखिए, मैं भी जाऊंगी आपके साथ, आपके पीछे पीछे।
1: सावित्री, तू कहाँ? तू अब लौट जा और सत्यवान के शरीर का दाह संस्कार कर। तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो चुकी है। पति के पीछे जहां तक आना चाहिए था, वहां तक तू आ चुकी है।
0: भगवन, जहां आप इन्हें ले जा रहे हैं, वहां मुझे भी जाना चाहिए। आपकी दया से मेरी गति कहीं कुंठित नहीं हो सकती। नारी के लिए पति का अनुसरण ही सनातन धर्म है।
1: सावित्री, तेरी धर्मानुकूल युक्त बातों से मैं प्रसन्न हुआ। अतः सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई भी वर मुझसे मांग ले।
0: देव, मेरे श्वशुर के नेत्र की खोई हुई ज्योति पुनः वापस हो और वे बलवान तथा तेजस्वी हो जाएं।
1: एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। अब तू लौट जा, नहीं तो थक जाएगी।
0: पति के समीप रहते हुए मुझे किसी भी प्रकार की थकावट नहीं है। जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे, वहां मुझे भी आश्रय मिलना चाहिए। और दूसरा लाभ है सत्पुरुषों का संग, जो कि समस्त अभीष्ट की पूर्ति करने वाला है। संत समागम कभी निष्फल

0: नहीं आता। अतः सदा सत्पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए।
1: सावित्री, तूने जो बात कही वो संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए हितकर तथा मुझे अत्यंत प्रिय है। अतः सत्यवान के जीवन को छोड़ कोई दूसरा वरमान।
0: देव, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें स्वतः वापस हो जाए तथा वे कभी भी धर्म का त्याग ना करें।
1: एव मस्तु, ऐसा ही होगा। अब तू लौट जा।
0: देव, आप सारी प्रजा का नियमन करने वाले हैं, अतः यम कहलाते हैं। मैंने सुना है मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना और सब पर समान रूप से दया करना श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। और श्रेष्ठ पुरुष शरण में आने पर शत्रु पर भी दया करते हैं।
1: कल्याणी, जैसे प्यासे को पानी मिलने से तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार तेरी धर्मानुकूल बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता होती है। अतः सत्यवान के जीवन के सिवा कोई तीसरा वर और मांग ले।
0: मेरे पिता अश्वपति के मेरे अतिरिक्त और कोई संतान नहीं है, अतः उन्हें पुत्र देने की कृपा करें भगवान।
1: तेरी ये इच्छा भी पूरी होगी। सावित्री, तू मेरे पीछे पीछे बहुत दूर आ चुकी है, अब तू लौट जा।
0: मैं अपने पति के समीप हूँ देव, अतः दूरी का एहसास नहीं। आप मेरी दो एक बातें और सुने।
1: बोलो।
0: विवस्वान के पुत्र होने के कारण आपको वैवस्वत कहते हैं। आप शत्रु मित्र सभी के साथ समान रूप से न्याय करते हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। अच्छे मनुष्यों का संतों पर जैसा विश्वास होता है, वैसा अपने आप पर भी नहीं। विश्वास ही सौहार्द का कारण है और सौहार्द ही विश्वास का। सत्पुरुषों में सबसे अधिक सौहार्द का भाव होता है, इसलिए उन पर सभी विश्वास करते हैं।
1: सावित्री, तूने जो बातें कही है वैसी मैंने किसी और के मुंह से नहीं सुनी है, अतः मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई। अब तू सत्यवान के सिवा कोई चौथा दर भी मांग ले।
0: भगवान, मुझे भी कुल की वृद्धि करने वाले संतान प्राप्त हों। वे सभी यशस्वी और पराक्रमी हों।
1: तेरी ये अभिलाषा भी पूर्ण होगी। अच्छा, अब तू बहुत दूर चली आई, जा जा, लौट जा।
0: प्रभु, संतों का संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। भूत और भविष्य के आधार भी वही हैं। निष्काम भाव से दूसरों की भलाई करना और सदा परोपकार में लगे रहना ही सनातन सदाचार है।
1: हे सावित्री, तूने मेरे मन को जीत लिया। तेरी ये धर्मानुकूल बातें गंभीर अर्थ से युक्त तथा मेरे मन को लुभाने वाली है। तू जो जो ऐसी बातें सुनाती है, त्यों त्यों तेरे प्रति अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है। अतः तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग।
0: भगवान, अब तो आप सत्यवान के जीवन का ही वरदान दीजिए, इससे आपके ही सत्य।
2: आप सुन रहे थे नाटक सावित्री का संकल्प। लेखिका थी श्रीमती सांत्वना साहा, प्रस्तुतकर्ता अरुण कुमार पासवान। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
3: Just go through the day. You could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। 11 बजे हैं, पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फिल्म दे दे प्यार दे टू का टू से। आवाज है सागर भाटिया के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
6: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। साथियों, आपको सुनवा रहे हैं ओ रोमियो फिल्म का यह गीत, जिसे शुरू से सवारा है अरिजीत सिंह ने।

नई फिल्मों से अगला गीत सुनिए, द गर्लफ्रेंड फिल्म से, जिसे स्वर से सजाया है चिन्मय श्रीपदा और साथियों ने।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। अरिजीत सिंह की आवाज़ में अब सुनिए ये गीत फिल्म एक दिन से।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश में सुनिए द राजा साहब फिल्म का यह गीत, आवाज है विशाल मिश्रा और साथियों के।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 km, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। पेश है कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। नमस्कार साथियों, आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रिया। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि कोई हमारा साथ देगा, कोई हमें समझेगा, कोई हमें आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक सच यह भी है साथियों कि सबसे मजबूत सहारा हम खुद होते हैं। जब पूरी दुनिया हम पर शक करती है, तब सिर्फ हमारा आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है। दोस्तों, इसी खूबसूरत सोच के साथ स्वागत है हमारे कार्यक्रम गुलदस्ता में। तो आज हम बातें करेंगे खुद पर भरोसा, यानी जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

श्रोताओं, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। दोस्तों, आपके लिए दूसरों की राय बदल सकती है, लेकिन आपका खुद के प्रति, खुद के लिए जो विश्वास है, वो कभी नहीं बदल सकती, और वही आपकी असली ताकत है। याद रखिए साथियों, अगर आप खुद को कमजोर मान लेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी

जी हाँ दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में हार और असफलता तो आती जाती रहती है, लेकिन जो इंसान गिरकर फिर उठता है वही असली विजेता बनता है। साथियों, दूसरे लोग आपकी क्षमता पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास ही आपको कभी हारने नहीं देगा।

जी हाँ साथियों, वो कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। इसलिए अपने हौसलों को बिल्कुल कम ना होने दें। प्रिय श्रोताओं, हर व्यक्ति अलग है, हर किसी की अपनी कहानी है, इसलिए खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही खास हैं। जब आप खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब जिंदगी एकदम आसान लगने लगती है।

प्रिय श्रोताओं, दूसरों का साथ मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई साथ ना भी दे तो कभी तो भी खुद का हाथ मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन आपको खुद पर भरोसा हो जाएगा उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी।

दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत उसी दिन होती है जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखिए, अपने हौसले को जिंदा रखिए और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं।

तो इसी सकारात्मक जुनून के साथ आज के गुलदस्ता कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिया को इजाजत। नमस्कार।

कंपीयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। प्रस्तुत करता है श्री पार्वती के।

नारी लोग सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के नारी लोग कार्यक्रम में। बहनों, परिवार मानव जीवन की पहली पाठशाला है। जन्म लेने के बाद शिशु सबसे पहले अपने परिवार से ही बोलना, चलना, व्यवहार करना और अच्छे बुरे का अंतर समझना सीखता है। परिवार केवल साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास, सुरक्षा और संस्कारों का आधार है। हमारे जीवन में परिवार का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि परिवार ही हर दुख सुख में हमारा साथ देता है। परिवार से हमें कई चीज़ें मिलती है जो अन्यत्र कहीं से मिलना संभव नहीं है, जैसे प्रेम और स्नेह का स्रोत। परिवार हमें निस्वार्थ प्रेम और अपनापन देता है। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य सभी मिलकर जीवन को खुशियों से भर देते हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तब परिवार हमें सहारा, हिम्मत और सही मार्गदर्शन देता है। बहनों, संस्कार और शिक्षा भी परिवार के द्वारा ही मिलती है। बच्चों को अच्छे संस्कार परिवार से ही मिलते हैं। सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना, अनुशासन में रहना और परोपकार की भावना जैसी नैतिक मूल्यों की शिक्षा हमें परिवार से ही मिलती है। ये हमें जीवन जीने की सही दिशा देता है। सुरक्षा और सहयोग। परिवार हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह होता है। कठिन परिस्थितियों में हमारा साथ देता है और समस्याओं का सामना करने का हौसला देता है। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक सहयोग भी हमें परिवार से ही मिलता है। व्यक्तित्व निर्माण। एक अच्छे परिवार का वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। परिवार से मिली प्रेरणा और मार्गदर्शन से व्यक्ति आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनता है। परिवार हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक जीवन की शुरुआत। समाज में कैसे रहना है, लोगों से कैसे व्यवहार करना है, ये सब हम परिवार से ही सीखते हैं। परिवार हमें देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने में हमारी मदद करता है। खुशी और मानसिक शांति। परिवार के साथ बिताया गया समय मन को शांति और आनंद देता है। परिवार के साथ त्योहार, उत्सव और खुशियां मनाने से जीवन में उत्साह बना रहता है। एक खुशहाल परिवार व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। बहनों, आधुनिक जीवन की व्यस्तता के कारण हम परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन प्रयास करके हम अपने परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं। पारिवारिक समय का अर्थ केवल साथ रहना ही नहीं, ये प्रेम, विश्वास और सहयोग की ऐसी नींव बनाना है जो परिवार के प्रत्येक सदस्य को जीवन भर का सहारा दे सके। अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं बहनों और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242।

0: ओ चार दो हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: अंतराल की बात बहनों, अब आइए सुनते हैं श्वेता मिश्रा से काव्य पाठ।
2: हे गौतम बुद्ध, करुणामय तथागत, क्षमा करें इस चंचल चेतना को, यह अभी विरक्ति की उस धवल चादर में स्वयं को आवित्र कर पाने में असमर्थ है। नहीं चाहिए मुझे निर्वाण का निष्कंप शून्य, ना ही उस समाधि की निस्तब्धता जहां इच्छाएं विलीन होकर अस्तित्व का ही अतिक्रमण कर जाएं। मुझे अभी जीना है इस स्पंदित स्नेहिल संवेदनाओं से भरे मायावी जगत के मध्य। यह माया जो आपके आदेशों में बंधन कही गई है, मेरे लिए वही स्नेहिल आलंगन है जिसमें बंधकर मैं अपने होने का प्रमाण पाती हूँ। हे शरणदाता, कभी अधूरी है मेरी यात्राएं, कुछ पथ ऐसे हैं जिसकी धूल मेरे चरणों से अपरिचित हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जिनके जल को मेरे स्पर्श की अभी अनुभव नहीं, अभी शेष हैं वे मिलन जो समय प्रतांत स्थगित रह जाएं, कुछ नेत्र ऐसे हैं जिनमें झांक कर मैं स्वयं को पहचानना चाहती हूँ। मोह जिसे आप त्यागने का उपदेश देते हैं वही मेरे हृदय हैं। अनुराग का अनंत विस्तार, हर क्षण नया अंकुर फूटता है, विरह से जो करुणा उपजती है वही तो जीवन की मधुर संगीत है, और प्रेम जो क्षणभंगुर होकर भी अनंत का आभास देता है। इसलिए प्रभु, मुझे नहीं चाहिए वह निर्वात जहाँ ना स्पर्श हो ना आकांक्षा, मैं तो पुनः पुनः जन्म लेना चाहती हूँ। इस मृतिका की सेंध गंध में, रिश्तों की मधुर उष्मा में, आकांक्षा की धधकती ज्वाला में, कि हर जन्म में मैं कुछ नया रच सकूँ, कुछ अधूरा पूरा कर सकूँ और फिर से बन सकूँ मोह और तृष्णाओं के नवीन कोमल मानवीय बंधन, क्योंकि त्याग से परे भी एक सत्य है जहाँ जीवन अपनी संपूर्णता में अपनी अपूर्णताओं सहित अधिक सुंदर, अधिक सत्य प्रतीत होता है। जब पूछता है मन, माँ तुम किस मृतिका से बनी हो, तो शब्द स्वयं ही संकुचित हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा उत्तर भाषा के पार का सत्य है। तुम वह मृतिका हो जिसे पीड़ा ने गूंथा है, संघर्ष ने आकार दिया है और प्रेम ने अमृतत्व प्रदान किया है। तुम्हारी आंखों में जो निस्तब्धता है वह थकान नहीं है, वह उन अनगिनत सपनों का विश्राम है जो तुमने हमारे लिए त्याग दिए हैं। तुम किस मृतिका की सृष्टि हो, कौन सी धरती ने तुम्हारे अस्तित्व को गढ़ा है, तुम्हारे अस्तित्व में जहाँ हर कण में करुणा है, हर शब्द में समर्पण है और हर क्षण एक अविरल आशीष का सागर है। वह मृतिका सामान्य नहीं हो सकती, वह तो तपस्याओं के अग्निकुंड में तपकर, संघर्षों के शिलाखंडों से टकराकर, त्याग के निर्झरों में स्नात होकर निर्मित हुई है। माँ, मृतिका के ममत्व काल के विस्तीर्ण तट पर अंकुरित एक अविरल संवेदना प्रवाह है, जर्जर होकर भी मृदुल अक्षुण्य दीप्ति से आलोकित मातृत्व का अनश्वर सत्य, क्योंकि वही मैं संपूर्ण हूँ, वही मेरा अस्तित्व है और वही इस समस्त सृष्टि का वास्तविक केंद्र। एक अनकही प्यास, किसी बीते हुए पल में जब अब भी एक ख्वाहिश अधजली सी सुलगती है, जैसे स्मृतियों की राख तले कोई चिंगारी अब भी चुपके चुपके जलती है, जो वक्त की उंगलियों से फिसलकर अनंत में कहीं विलीन हो गया है, पर उसकी आहट आज भी मन के किसी निर्जन कोनों में खनकती है। एक अनकही ख्वाहिश थी, ना शब्दों ने जिसे छुआ ना अधरों ने जिसे व्यक्त किया, बस आंखों की नमी ने और मुस्कानों की ओट में छुप छुप कर चुपचाप कहीं पलती है। कभी चाहा था कि वक्त की धारा कहीं ठहर जाए, उस एक क्षण को अनंत का आलिंगन मिल जाए। पर समय का गति निष्ठुर निर्विकार अनवरत किसी की प्रतीक्षा में कहाँ ठहरती है। जब निष्ठब्धता का आवरण गहराता है और आत्मा अपने ही

प्रतिबिंब से संवाद करती है। जब निशब्दता का आवरण गहराता है और आत्मा अपने ही प्रतिबिंब से कहीं संवाद करती है, तब वह अनकही चाह धी

0: है, वही मेरा नूर और वही मेरी गुरूर है। माँ ही मेरी आज है और माँ ही मेरा कल भी। यों तो बेटों पर अपनी जान छिड़कती है माँ, यों तो बेटों पर अपनी जान छिड़कती है माँ, पर बेटियों को भी अपनी आंचल में संजोकर छुपा लेती है माँ। दुनिया की नज़रों से बचाकर सही गलत की सीख सिखाती है माँ। माँ की डांट में भी उनका प्यार, उनकी फ़िक्र और दर्द झलकता है। हम दुनिया में सर उठाकर चल सके, यह एक सपना उनकी आंखों में हर पल पलता है। माँ की डांट में भी उनका प्यार, फिक्र और दर्द झलकता है। हम दुनिया में सर उठाकर चल सकें, यही एक सपना हर पल उनकी आंखों में पलता है। माँ की महानता चंद पंक्तियों में व्यक्त कर पाना ये इंसानों के लिए संभव ही नहीं। माँ की महानता चंद पंक्तियों में व्यक्त कर पाना ये किसी इंसान के लिए संभव ही नहीं, ये तो ईश्वर के लिए भी नामुमकिन है। एक अंतहीन प्यास। जहाँ कभी मखमली घास की चादर बिछी थी, जहाँ कभी मखमली घास की चादर बिछी थी, वहाँ आज कंक्रीट की सड़कें बिछ गई हैं। जिन पेड़ों की छाँव में सुकून पलता था, जिन पेड़ों की छाँव में सुकून पलता था, वो कुल्हाड़ियों की भेंट चढ़ गई हैं। नदियाँ सिमटकर नाला बन गई हैं, अपनी ही धारा में सिसकती दम तोड़ती, अपनी ही धारा में सिसकती दम तोड़ती, हरियाली की चादर को शहर ग्रास कर गया है। प्रकृति की छटाएं गमलों में सिमट कर रह गई हैं और आसमान खाली है, वह चहचहाहट कहीं खो गई है। मोबाइल टावरों की शोर में दब चुकी हैं नीलकंठ की मीठी तान, मोबाइल टावरों के शोर में दब चुकी हैं नीलकंठ की मीठी तान। गोरैया अब आंगन में दाना ढूंढने नहीं आती हैं, गोरैया अब आंगन में दाना ढूंढने नहीं आती हैं। खेतों को निगल गई हैं ऊंची अट्टालिकाएं, अपनी मिट्टी को बिकते देख किसान सिसक रहे हैं, अपनी मिट्टी को बिकते देख किसान सिसक रहे हैं। अन्नदाता आज मजबूर हैं मजदूर बनने को, अन्नदाता आज मजबूर हैं मजदूर बनने को। आंखों का सपना शहर की धूल में बह रहा है, आंखों का सपना शहर की धूल में बह रहा है। पर्यावरण का असंतुलन अब दस्तक दे रहा है, बदलते मौसम पिघलते ग्लेशियर सब गवाही हैं, हमने विकास तो पा लिया है। बदलते मौसम पिघलते ग्लेशियर सब गवाही हैं, हमने विकास तो पा लिया है पर सांसें गिरवी रख दी हैं।
1: अभी बहनें सुन रही थीं काव्य पाठ, कवित्री थीं श्वेता मिश्रा। अब आइए बहनों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहनों, अब आइए सुनते हैं पूर्व प्रसारित कहानी घर की बहू। कहानीकार हैं नोमिता सिन्हा।
1: शांता एक सरल एवं शांत स्वभाव की लड़की थी। गांव के सभी लोगों की प्यारी थी। अपने माता पिता की अकेली संतान थी। अभी अभी यौवन के दहलीज पर कदम रखी थी। वह पूरे 17 वर्ष की हो चुकी थी। शांता बचपन से ही अपने माता पिता के साथ रही। अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। माता पिता भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देते थे। यही कारण था कि वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गई थी। शांता अपनी माँ का ध्यान रखती ही थी, पिता की सेवा में भी लगी रहती थी। शांता की माँ चाहती थी कि शांता की शादी कर दें ताकि वह राहत की सांस ले सके। शांता की माँ जब भी अपने पति को खाना खिलाती तो एक बार शादी की चर्चा अवश्य करती कि देखो शांता के बाबू, हमारे तो एक ही लड़की है और अब वह जवान हो चली है और तुम हो कि कुछ सोचते नहीं। अरे अभी से घर वर की तलाश करोगे तो हमारी बिटिया के लिए अच्छे वर खोज सकोगे। इस पर शांता के पिता झल्ला उठते और कहते, बस बस पास बैठी नहीं कि एक रामायण ही गाने लगती हो। हम कोनो दुश्मन है क्या जो नहीं सोचेंगे? सच में जिसके घर बेटी होती है वहाँ माता पिता विवाह हेतु चिंतित रहते हैं। शांता पिछले ही वर्ष गांव के स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास कर चुकी थी। शांता अपनी माँ से कहती, माँ मुझे आगे कॉलेज पढ़ने जाना है। गांव की एक दो लड़की हॉस्टल में रहकर पढ़ रही है। तुम हो कि मुझे अपने पास ही से दूर ही नहीं होने देना चाहती? माँ का आंचल पकड़ कर कहती, माँ मुझे जाने दो ना। यह सब सुनकर माँ गंभीर हो गई थी। उसने कहा, देखो बेटी मैं इस विषय पर तुम्हारे पिताजी से चर्चा करूंगी। शांता की माँ अपने पति को खाना खिलाते समय तार का पंखा अवश्य झलती थी, चाहे गर्मी हो कि जाड़ा। शायद उसने संस्कार बना लिया था। पंखा झलते झलते कहने लगी, अजी सुनते हैं शांता कॉलेज में पढ़ना चाहती है। इतना सुनते ही शांता के पिता क्रोधित हो उठे और मुंह का निवाला शीघ्र ही निगलते हुए बरस पड़े। जो मन में आता है वैसा बक देती हो। अभी एक दिन पहले उसकी शादी की बात कर रही थी, अब पढ़ने की बात करने लगी। सुनो मैंने घर भर तलाश कर लिया है, अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लड़की को अच्छा पति मिल जाए यही सब माता पिता चाहते हैं। शांता की माँ सामान्य हो गई थी। वह बोल उठी, तब तो बहुत ही अनेक काम किए हैं, मेरे मन को भी हल्का हो गया। शांता की माँ अपने पति से एक ही सांस में प्रश्नों की बौछार कर दी। लड़का क्या करता है, देखने में कैसा है, परिवार कैसा है, उसकी खेती की जमीन कितनी है। शांता के पिता ने कहा, बस बस धीरज रखो सब बता दूंगा। देखो तुम चुप भी तो रहो, हम कोई खराब लड़का कर सकते क्या? लड़का देखने में गोरा है, नाक नक्श भी अच्छे हैं, वह इंजीनियर है और ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भी जा रहा है। घर में सास ससुर देवर ननद सभी हैं। शांता की माँ गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, चलो तब तो ठीक है। शांता की माँ ने अपने पति को घर के दरवाजे पर छोड़ आने के बाद अपने खाट पर बैठ कल्पना की दुनिया सजाने लगी थी। हालांकि शांता अभी

0: शादी करने के पक्ष में नहीं थी। इस विषय पर वह अपनी माँ से नाराज भी रहने लगी थी। जीत तो माता पिता की ही हुई, शांता की एक न चली, शांता की शादी हो गई। शांता की सखी सहेलियाँ, आस पड़ोस की औरतें, अपने रिश्तेदार सभी शांता की विदाई में गांव के तालाब तक छोड़ आए। शांता के जाने के बाद जब चेहरे सबके चेहरे उदास थे, माता पिता ना जाने चुपचाप बैठे क्या सोच रहे थे। बेटी की विदाई का दर्द कुछ और ही होता है। सूरज के घर अगर बेटी होती तो आंसुओं से सूरज को भी वो भी बुझा देती। शांता अपने ससुराल में आ चुकी थी। नई नवेली दुल्हन को घर के संस्कारों से अवगत कराया गया। तब घर के सदस्यों के साथ संबंध भी बताए गए। उसका पति पढ़ा लिखा होने के बावजूद भक्ति रस में डूबने वाला था। पूजा पाठ में उसे विशेष आस्था थी। कुछ दिन में दशहरा आ गया। शांता के पति ने नवरात्रा व्रत रख लिया, वो भी निराहार। शांता पति की सेवा में लगकर सारे पूजा पाठ की सामग्री सजाकर पूजा घर में रख देती थी। शांता सोच रही थी अब तो 9 दिन तक इसी तरह करना होगा और आज तो पहला ही दिन है। सबको खिलाने के बाद वह अपना थाली परोस ही रही थी। इतने में सास शांता की आकर उसके पीछे खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम्हें पत्नी धर्म का ज्ञान नहीं है? यह संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया है? पति जैसा करे पत्नी उसमें उसको साथ देना चाहिए। बेचारी शांता अपनी थाली वापस रख दी। बेचारी उसे ही घर में बैठी बैठी सोचने लगी, बहू ने यह जानते हुए भी कि आगे बाल बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, ऐसे कठिन संकल्प क्यों लिया होगा? पहला कारण शायद यही रहा होगा। स्वयं बहू को लगा होगा कि पति खाए बगैर वह कैसे खा सकती है। ऐसा सोच हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हम अपने अनुभव से जानते हैं स्त्रियां हर हाल में, यहाँ तक कि गर्भावस्था एवं बीमारी के दौरान भी पति बच्चों को खिलाने के बाद ही खाती है। दूसरा कारण यह भी रहा हो कि बहू को लगा होगा अगर वो पति के साथ व्रत रखे, सास ससुर पति आदि सबको यह बात अच्छी लगेगी। भला नई बहू ऐसा कुछ न करना चाहे जिसमें उसका मान घटे। तीसरा का कारण बहू का ये भी होगा कि पति से डर भी लगा रहता है कि पति के अनुसार वह नहीं चल पा रही है। शांता भी पति के साथ चलना स्वीकार कर ली थी। ससुराल के संस्कारों के बोझ को वह ढो रही थी। शांता संस्कारों के बोझ को ढोते ढोते कमजोर हो चली थी। एक बार उसने अपने पति से कहा, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, तुम्हारा क्या विचार है? इस पर पति ने कहा था, सुनो, यहाँ हुआ बहू को बाहर निकलने का रिवाज नहीं है, मैं अपने पिता के विरोध में नहीं खड़ा हो सकूंगा। शांता शांत हो गई और फिर उसने मुंह नहीं खोला था। शांता के पति को अमेरिका ट्रेनिंग के लिए जाना था, वह समय पर चला गया। अब शांता बिल्कुल अकेली थी। टूटे फूटे संस्कारों के अंदर वह घुटन महसूस करने लगी थी। गांव के परिवेश में अमृत की डाली पर झूलते हुए पंछी को सोने का पिंजरा भी नहीं रहना नहीं गवारा था, लेकिन मायके और ससुराल की इज्जत बचानी थी, बेचारी करती क्या। इस तरह सोच सोच कर उसका बुरा हाल हो गया था। अस्वस्थ हो चली थी शांता की सास, इलाज के खर्च अपने सर लेना नहीं चाहती थी, इसलिए गांव में यह खबर भेज दी कि शांता की तबीयत कुछ खराब है, आकर उसे ले जाएं। शांता के माता पिता खबर पाते ही शांता के ससुराल आ गए और शांता को घर ले गए। वहाँ इलाज होने के बाद शांता स्वस्थ हुई। शांता के पिता ने शांता को आगे पढ़ाया, मेडिकल में दाखिला करवाया और शांता एक डॉक्टर बन गई। शांता के माता पिता ने तब शांता की विदाई पुनः की थी। शांता अपने ससुराल में ही एक क्लिनिक खोल रखी थी, अच्छा पैसा कमा रही थी। सास ससुर ननद देवर अब उसके कद्र करने लगे थे। शांता का ही बोलबाला था, अब तो शांता जो बोलती वही संस्कार बन जाते। अब वह स्वतंत्र वातावरण में जी रही थी, लेकिन अनुशासन के अंदर।
1: अभी बहनें सुन रही थी पूर्व प्रसारित कहानी घर की बहू। कहानीकार थी नमिता सिन्हा। अब आइए बहनों सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

इस गीत के साथ ही बहनों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दी अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नारी लोक कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता थी श्री पार्वती के। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है। हाँ। ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार

0: की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात, अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
1: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
1: जी
0: अच्छा, बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: अरे नहीं, यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा दिया है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच

कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज लोक रंग की गायक कलाकार हैं रेखा देवी। कार्यक्रम के आरंभ में इनके स्वर में सुनिए देवी गीत।

लोक रंग कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन पाएंगे 1:20 पर। अभी समय है प्रादेशिक समाचार का, इसे हम रिले कर रहे हैं हमारे रांची केंद्र से। थोड़ी प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कोयला राज्य मंत्री ने की झरिया मास्टर प्लान और पुनर्वास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा। निर्माण कार्यों की निगरानी करेंगे आईआईटी और आईआईएम। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य संशोधित रिजल्ट मामले में जेएसएससी को प्रार्थियों की सीटें सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। अगली सुनवाई 7 जुलाई को। राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने की तैयारी। सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में लगेंगी ऑटोमेटिक पैथोलॉजी मशीनें। कोयला मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने रांची में की सीसीएल की समीक्षा। सोशल मीडिया और तकनीकी कार्यों में हिंदी के उपयोग को सराहा। और रांची में वैज्ञानिक पद्धति आधारित लाह खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बांटे टूल किट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कोयला भवन में

0: करने के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों का सहयोग लिया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य के संशोधित रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जेएसएससी को प्रार्थियों के लिए सीट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए आगामी 7 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने काफिले से गाड़ियां कम करने की पहल का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने स्वागत किया है। आदित्य साहू ने प्रधानमंत्री के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं को भी प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेनी चाहिए।
1: पेट्रोल डीजल को लेकर के वैश्विक कठिनाई उत्पन्न हुई है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों की वेदना को समझते हैं और उनकी कठिनाइयों को हर संभव 24 घंटा दूर करने में लगे रहते हैं। अब पेट्रोल डीजल की कमी आयात होने के चलते देशवासियों से अपील किया है कि कम से कम डीजल पेट्रोल उपयोग करने का काम करें, जो आवश्यक आवश्यकता है उसी में इसका उपयोग करने का काम। उनके काफिला थे उसमें भारी कमी की गई है, जो गाड़ियां उनके काफिले में है वो भी बैटरी सिस्टम से चलने वाली गाड़ियां हैं।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री बचत की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता जमीन पर काम करने के बजाय केवल फोटो खिंचाने और इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त हैं।
2: भारतीय जनता पार्टी का जवाब समय आने पर दिया जाएगा। चुनाव रहता है तब तो आप बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, और चुनाव खत्म हो गया आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। उसके पहले अर्थव्यवस्था की बात आपके द्वारा कहाँ कहा जा रहा था। देश चलाने में ये असफल रहे और जनता भी समझ रही है कि आप जनता के साथ क्या कर रहे हैं।
0: राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में पूर्णतः ऑटोमेटिक पैथोलॉजी मशीनें लगाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण के बाद इस योजना का विस्तार सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किया जाएगा। रांची में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यातायात पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों को ब्लैक फिल्म, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके अलावा ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य करने तथा स्कूलों के समय यातायात दुरुस्त रखने को कहा गया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले तब NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
3: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात।
4: ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF किया है।
0: कोयला मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय टीम ने रांची स्थित CCL मुख्यालय में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। डॉक्टर माणिक चंद्र पंडित के नेतृत्व में आई इस टीम ने प्रशासनिक, तकनीकी कार्यों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर हिंदी के उपयोग का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान CCL प्रबंधन ने बताया कि राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025-26 में कुल 19 कार्यशालाएं आयोजित की गई। रांची के लापुंग प्रखंड के सिद्कोफेड द्वारा वैज्ञानिक पद्धति आधारित लाह खेती प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहातर की बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान 3 पंचायतों के 377 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आगामी जून जुलाई

0: जुलाई माह में प्रत्येक किसान को 5-5 किलो कुसुमी एवं रंगीनी लाह बिहन 100% अनुदान पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। रांची के सिविल सर्जन ने राजधानी के सभी निजी अस्पताल संचालकों के साथ आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि योजना के तहत आने वाले पात्र मरीजों को बिना किसी परेशानी के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए।
1: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आगे बढ़ाना और एबीडीएम में झारखंड और रांची सदर अस्पताल भी काफी आगे बढ़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम हुआ, इसकी चर्चा हुई कि यहां काफी अच्छा काम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हो रहा है।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत केंद्रीय जांच टीम ने मानगो नगर निगम क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। सुबह NH-33 और बालीगुमा से शुरू हुए इस निरीक्षण में टीम ने कचरा संग्रहण प्रणाली का जायजा लिया और घरों में जाकर लोगों से सीधा फीडबैक लिया। इस दौरान मोबाइल ऐप के जरिए केंद्रीय सर्वर पर ग्राउंड रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 595 अंक बढ़कर 75,204 पर और निफ्टी 208 अंक की वृद्धि के साथ 23,620 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,50,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 3,05,000 रुपये प्रति किलो है। पलामू जिले में कल देर शाम आई तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में पेड़ गिरने से एक अधेड़ समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने संताल परगना प्रमंडल समेत कई जिलों में कल 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी वज्रपात और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 मई को रांची समेत 15 जिलों के लिए ऐसा ही ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला राज्य मंत्री ने की झरिया मास्टर प्लान और पुनर्वास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा। निर्माण कार्यों की निगरानी करेंगे IIT और IIM। झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य संशोधित रिजल्ट मामले में JSSC को प्रार्थियों की सीटें सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। अगली सुनवाई 7 जुलाई को। राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने की तैयारी। सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में लगेंगी ऑटोमेटिक पैथोलॉजी मशीनें। कोयला मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने रांची में की CCL की समीक्षा। सोशल मीडिया और तकनीकी कार्यों में हिंदी के उपयोग को सराहा। और रांची में वैज्ञानिक पद्धति आधारित लाह खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बांटे टूल किट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1,458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 1:20 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग का शेष भाग। गायक कलाकार हैं रेखा देवी। इनसे सुनिए झूमर।

0: लोक रंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज की गायक कलाकार थी रेखा देवी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है धारावाहिक पोषण नींव पर स्वास्थ्य महल की सातवीं कड़ी। लेखिका है डॉक्टर आरती स्मिथ। प्रस्तुतकर्ता है नायोमी शांति हेम्ब्रम।
1: जब भी हम शरीर स्वास्थ्य की बात करते हैं, पोषण की बात प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से उसमें आ जुड़ती है। क्यों ना जुड़े? पोषण के बिना भला हम स्वास्थ्य की बात कैसे सोच सकते हैं? इसीलिए तो हम विगत कई सप्ताहों से पोषण की नींव या बुनियाद पर निर्मित होने वाले स्वास्थ्य के महल की बात निरंतर और धारावाहिक रूप से कहते चले आ रहे हैं। अब हमारा ये धारावाहिक यानी पोषण नींव पर स्वास्थ्य महल धीरे धीरे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व रूपी ईंट गारे से बनता हुआ अपने निर्माण कार्य के लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। आज की इस सातवीं कड़ी में हम पोषक तत्वों की विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे।

0: पोषण भोजन के मध्य का ऐसा संतुलित रूप है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इसे इन शब्दों में कहें कि आहार का संतुलित रूप में समाहार ही पोषण है, जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य है। इसे हम भोजन का विज्ञान भी कह सकते हैं। इनमें अंतर निहित है
1: भोजन की क्रियाशीलता, भोजन का पोषक मूल्य, विभिन्न उम्र के लोगों की क्रियाशीलता, शारीरिक विकास एवं परिवर्तन के अनुरूप सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त आहार और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व युक्त भोजन।
0: हमारे आर्थिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व अथवा परिस्थितियां हमारे आहार चयन एवं आहार ग्रहण पर प्रभावी होते हैं।

0: प्रश्न ये उभरता है कि हमें पोषण क्यों चाहिए। हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन एवं पानी की जरूरत होती है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए पोषक युक्त भोजन की जरूरत होती है।
1: जन सामान्य को विभिन्न प्रकार की रंग युक्त फल, सब्जियां एवं अन्य आहार यथा दाल, चावल, आटा, दूध आदि समुचित मात्रा में लेना चाहिए।
0: स्वस्थ जीवन शैली बिताने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, शारीरिक व्यायाम अथवा कार्य करना चाहिए और शरीर की लंबाई के अनुपात में मानक वजन रखना चाहिए। धूम्रपान तथा अधिक मात्रा में शराब के सेवन से परहेज करना चाहिए। ऐसी बीमारियों पर नियंत्रण रखना चाहिए जिन पर आप भोजन एवं उत्तम जीवन शैली के द्वारा नियंत्रण बनाए रख सकते हैं।
1: यदि हम सब पोषक तत्व युक्त आहार एवं पेय पदार्थ सही मात्रा में न लें तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कैल्शियम की कमी होने से हड्डी में कमजोरी एवं खोखलापन आ जाता है और उसके टूटने चटकने की संभावना बढ़ जाती है।
0: इसी प्रकार विटामिन सी की कमी से मसूड़े से रक्त स्राव होता है। आयरन की कमी से रक्त प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने में असफल हो जाता है।
1: 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट से ये ज्ञात हुआ कि मात्र 17% मृत्यु संक्रामक रोगों से होती है, जैसे कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया चेचक आदि,
0: जबकि 73% मृत्यु हृदय से संबद्ध रोग, कैंसर, हाइपोक्सिया आदि बीमारियों से होती है जो वंशानुगत या संक्रामक नहीं होती।
1: तात्कालिक शोधों से पता चला है कि आज लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने लगे हैं और आहार में पोषक युक्त तत्वों पर ध्यान भी देने लगे हैं।
0: ये समझने के लिए कि पोषण व्याधियों से हमारा बचाव कैसे करता है, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि पोषण का सही अर्थ क्या है।
1: हमारा खान पान हमारी परंपरा को भी दर्शाता है। पोषण हमें बताता है कि हमें क्यों खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए जो हमारे शरीर और स्वास्थ्य को संतुलित रखे।
0: जब तक हमें ये पता ना हो कि हमें जाना कहाँ है, हम चलना शुरू नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम ये नहीं जान लेते कि पोषण की हमारे शरीर में क्या भूमिका है, तब तक हम पोषण के प्रति जागरूक नहीं हो सकते।
1: हमारा शरीर वास्तव में वही बनता है जो हम खाते हैं और पोषक तत्वों के रूप में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा या फैट लेते हैं।
0: हमारे शरीर में औसतन 60% पानी रहता है, 20% वसा रहता है और 20% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एवं मिनरल होते हैं।
1: हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियों की रचना करने और उसे यथावत बनाए रखने में ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है जो हमें भोजन एवं पेय पदार्थों से मिलता है।
0: भोजन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा इस प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, वसा 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम और अल्कोहल 7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम।
1: आए समझे कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा हमारे काम करने की क्षमता है। भोजन का हर टुकड़ा हमें ऊर्जा देता है, जबकि वह पोषक तत्व हो या न हो।
0: कैलोरी क्या है, आइए इसके बारे में जानें। कैलोरी वस्तुतः ऊर्जा का एक परिमाण है, या यूं कहें कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 ग्राम पानी के ऊष्मा से उन्नत ऊर्जा ही कैलोरी है।
1: पोषक तत्व खाद्य पदार्थ ईंधन का काम करता है। पर्याप्त भोजन के अभाव में पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती है। पोषक तत्व एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके उपयोग से कोशिका बनती है, मरम्मत होती है और मेंटेन रहती है।
0: पोषक तत्व से कोशिका को ताकत मिलती है, वो आदेश देने और लेने में सक्षम होती है। इससे एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है, जैसे सांस लेना, देखना, सुनना, स्वाद लेना, चलना, खराब चीज को बाहर निकालना, सूंघना आदि।
1: भोजन से हमें दो प्रकार के पोषक समूह की प्राप्ति होती है। पहले पोषक समूह में है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि व्यापक पोषक तत्व, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल है। दूसरे प्रकार के जो समूह है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें विटामिन है और मिनरल है।
0: हमें प्रतिदिन अलग अलग मात्राओं में तमाम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। समय एवं स्थान के अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता में अंतर होता है।
1: पोषक तत्वों की जानकारी पोषण वैज्ञानिकों के द्वारा, संचार माध्यम से पोषण शोधार्थियों के द्वारा तथा डाइटिशियन के माध्यम से मिल सकती है। सही पोषक तत्वों की जानकारी लेकर व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ रख सकता है।
0: अब हम बात करते हैं जल की। जल स्वाद रहित, स्वच्छ, रंगहीन, तरल, पोषक तत्वों से रहित होते हुए भी जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में 50% से 70% पानी रहना चाहिए।
1: जल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो सभी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कराने के लिए आवश्यक है। ये सीधे कैलोरी नहीं देता है, पर उसमें सहायक होता है।
0: जल की भूमिका की बात करें तो विभिन्न शारीरिक कार्यों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शरीर की सभी कोशिकाओं को अनिवार्य कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये तरलता लाता है और सभी ज्ञानेंद्रियों के लिए राहत कार्य करता है।
1: जल पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, विषाक्त तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है और रासायनिक प्रतिक्रिया को सामान्य करता है। ये हमारे भोजन को पचाने और उसको ग्रहण करने में मददगार होता है।
0: जल कब्ज को दूर करने हेतु हमारे मल को नरम करता है। इसके अतिरिक्त ये हमारे शरीर के आंतरिक ताप को कम करता है। हमारे शरीर में वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा हमें नमी प्रदान करता है। हमारे शरीर की अनेक जटिल प्रक्रियाएं जल द्वारा संतुलित अवस्था में बनी रहती है।
1: किसे कितना पानी चाहिए, ये निर्भर करता है हमारे वसा युक्त मांसपेशियों और उम्र पर। इसमें कोई ऊर्जा नहीं होती, इसलिए इसे पोषक तत्वों के चार्ट में नहीं रखा जाता है।
0: मांसपेशीय टिश्यू वसा टिश्यू की अपेक्षा अधिक जल रखता है। चूंकि पुरुष के शरीर की मांसपेशीय स्त्री के शरीर की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए उसमें जल की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार युवा के शरीर में वृद्ध की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक होती है।
1: शरीर को जल की पर्याप्त मात्रा देने के लिए हमें 240 मिलीलीटर के गिलास से 8 गिलास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए।

0: शारीरिक श्रम करने वालों को अपेक्षाकृत अधिक पानी पीना चाहिए।
1: अल्कोहल एवं कैफीन आदि को छोड़कर सभी तरल पदार्थ पानी की क्षतिपूर्ति करते हैं, लेकिन पानी सबसे अधिक स्वास्थ्यप्रद और प्यास बुझाने वाला तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं।
0: आइए देखें हम प्रतिदिन जल की कितनी खपत करते हैं। प्रतिदिन 800 से 1200 मिलीलीटर सांस लेने एवं पसीने में जल की खपत होती है। 600 से 1600 मिलीलीटर पेशाब के द्वारा इसकी खपत होती है और 50 से 200 मिलीलीटर फेसेस में इसकी खपत होती है। हम सब बगैर भोजन के एक सप्ताह तक रह सकते हैं, क्योंकि शरीर की मांसपेशियों एवं एकत्रित वसा के द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है, लेकिन जल के बिना कुछ दिनों में ही हम मरण के कगार पर पहुंच जाते हैं।
1: हमारी प्यास की प्रक्रिया हमें जल की जरूरत का संकेत देती है। यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है और हमारी किडनी एवं अन्य कोशिकाएं सही रूप में काम नहीं कर पाती हैं।
0: हम लोग फल सब्जियों से भी जल पाते हैं। इसकी मात्रा करीब 80% होती है और कुछ भोजन से भी पाते हैं। इसके अलावे जूस दूध आदि से भी जल की पूर्ति होती है, लेकिन सादा पानी ज्यादा अच्छा है।
1: भोजन में जल की मात्रा इस प्रकार निहित है। सूखे बीज जैसे कण या अधास्थि तथा फलियां जैसे सेम में जल की मात्रा 10% से भी कम होती है। शुद्ध वसा एवं तेल में जल का अभाव होता है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनमें जल की अलग अलग मात्राएं होती हैं,
0: जैसे बादाम में 7%, सेब में 85%, एप्रिकोट्स यानी कि खुबानी में 85%, केला में 76%, अंकुरित बीज में 92%, गेहूं की बीन में 35%, फूल गोभी 91%, मक्खन 20%, कच्चा पात गोभी 92%,
1: जैतून में 80%, प्याज में 80%, कच्चा गाजर में 88%, नारंगी 86%, कच्चा पपीता 89%, कच्चा पार्सले यानी अजमोदा 86%, कच्चा सफतालू यानी आड़ू 90% और कच्चा टमाटर 93%।
0: प्रोटीन। प्रोटीन शरीर का अनिवार्य पोषक तत्व है, जो ग्रीक शब्द प्रोटोज से बना है, जिसका अर्थ है प्रथम। इसे बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ये 22 अमीनो एसिड का संपूर्ण चक्र है।
1: प्रोटीन की समुचित मात्रा हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है, ताकि हमारा शरीर सही ढंग से काम कर सके। हमारे शरीर के सही वजन का आधा, जिनमें मांसपेशियां, बाल, नाखून और त्वचा भी शामिल हैं, ये सब प्रोटीन से ही बनते हैं।
0: प्रोटीन हमारी शरीर की नई कोशिकाओं को जन्म देती है, टिश्यू को सुदृढ़ बनाए रखता है और संश्लेषित होकर शारीरिक क्रिया में मदद करता है।
1: प्रोटीन का आधा भाग एंजाइम बनाता है। विशिष्ट कार्यकारी प्रोटीन कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे वे भोजन को पचाते हैं और उसे संयोजित करते हैं, या नई कोशिका के निर्माण हेतु परमाणु विघटन करते हैं तथा रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं।
0: प्रोटीन की भूमिका हमारे शारीरिक विकास एवं क्रियाकलाप में महत्वपूर्ण है। प्रोटीन 22 अमीनो एसिड की पूर्ण श्रृंखला है, जो हमारे शरीर के ऊतकों को बनाता है, उन्हें दुरुस्त रखता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है।
1: हमारा शरीर 13 अमीनो एसिड बनाता है, इन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। शेष 9 अमीनो एसिड को भोजन के द्वारा लेने की आवश्यकता होती है, इन्हें अनिवार्य या एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है।
0: अमीनो एसिड में कार्बन हाइड्रोजन एटम के साथ ही नाइट्रोजन ग्रुप भी पाया जाता है। नाइट्रोजन ग्रुप का अमीनो एसिड प्रोटीन को संश्लेषित करता है। हमारी कोशिका और इम्यून सिस्टम प्रति रक्षित नियम अपने को बनाए रखने और पुनः बनने की प्रक्रिया हेतु प्रोटीन पर निर्भर करते हैं।
1: प्रश्न उभरता है कि हम प्रोटीन का उपयोग कैसे करें या कैसे करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा कम मात्रा में होते हैं तब प्रोटीन ऊर्जा की पूर्ति करता है, किंतु ये ऊर्जा की पूर्ति हेतु कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से कम कारगर होता है।
0: यदि इसे ऊर्जा के ही उपयोग में लाया जाए तो ये शरीर के ऊतकों को बनाए नहीं रख सकता है। हमारे शरीर में इतनी योग्यता नहीं है कि वो प्रोटीन को एकत्र रख सके या वो सभी एमिनो एसिड को संश्लेषित कर सके जिसकी हमें जरूरत है। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रोटीन लेना जरूरी है।
1: प्रत्येक जल कोशिकाओं की बाहरी एवं भीतरी परत प्रोटीन से निर्मित होती है। हमारे पाचन क्षेत्र में कोशिकाएं केवल एक या दो तीन एमिनो एसिड को स्वयं में समाहित कर पाती हैं। इसलिए भोजन से प्राप्त प्रोटीन एंजाइम के द्वारा अपने तत्व अमीनो एसिड में टूटता है।
0: हमारे शरीर की कोशिकाओं में विद्यमान दूसरे एंजाइम नए प्रोटीन को संश्लेषित कर वैसे अमीनो एसिड को संयोजित करते हैं जिसकी आवश्यकता शरीर को क्रियाशील रखने के लिए होती है।
1: शरीर की आवश्यकता अनुसार प्रोटीन निर्मित करने हेतु 22 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। इनमें से 9 अमीनो एसिड अनिवार्य कहलाते हैं क्योंकि इसे शरीर नहीं बना पाता है। इन्हें भोजन के द्वारा लेना हमारे लिए अनिवार्य होता है।
0: शेष 13 अमीनो एसिड को नॉन अनिवार्य या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। हमारा शरीर वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य अमीनो एसिड की सहायता से इसे बनाने में सक्षम है।
1: अनिवार्य अमीनो एसिड के नाम इस प्रकार हैं: हिस्टोडिन, आइसोलुसिन, लुसिन, लाइसिन, मेथायोनिन, फेनिल अलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, वेलिन।
0: 9 अनिवार्य अमीनो एसिड के नाम इस प्रकार हैं: अलानिन, अर्जिनिन, अस्पारागिन, अस्पार्टिक, सिस्टेन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन, सिस्टाइन, ऑर्निथिन और ग्लूटामिक एसिड।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक पोषण नींव पर स्वास्थ्य महत्व की 7वीं कड़ी। लेखिका थी डॉक्टर आरती स्मिथ, प्रस्तुतकर्ता थे नयोमी शांति हेम्ब्रम, संयोजक थे शंकर राम, मार्गदर्शन एवं परिकल्पना थे शिवमंगल सिंह मानव के, वाचक थे डॉक्टर विजय कुमार मिश्र, वाचिका थी संगीता घोष। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001।

0: 4-2-4-2
1: ओ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 लो अभी फोन लगाता हूँ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 पर।
2: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
3: सुबह की सुहानी धूप में ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
4: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
3: रूबरू होंगे आप खबरों से,
4: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
3: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
4: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
3: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर।
4: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
3: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
4: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
3: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर।
4: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
3: तो जरूर सुनिए गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
5: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 1:54 होने ही वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: मंच पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। श्री चौधरी आज दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को हस्तांतरित किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की मांग करेंगे। श्री चौधरी ने जिले के शोभन में एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की, साथ ही उन्होंने TMCH में चल रहे कार्य की प्रगति को लेकर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट के लिए उपचुनाव की मतगणना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आरा के राजकीय पालिका विद्यालय स्थित मतगणना केंद्र पर कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच मतों की गिनती की जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार प्रथम वरीयता में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका, जिसके बाद द्वितीय वरीयता की मतों की गिनती की जा रही है। इस सीट के लिए 12 मई को मतदान हुआ था। गौरतलब है कि यह सीट पूर्व MLC राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई है। पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार

0: जिले में आज नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैक आउट मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉकड्रिल शाम 7 बजे से 7:15 तक आयोजित होगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। प्रशासन ने लोगों से मॉकड्रिल में सहयोग की अपील की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तेल कंपनियां अब 10 लाख से अधिक आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं देगी। इस संबंध में IOCL, BPCL और HPCL कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं के निबंधित मोबाइल पर संदेश भेजा जा रहा है। बिहार राज्य LPG वितरक संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे संदेश में 7 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया मांगी गई है। यदि उपभोक्ता आपत्ति नहीं जताता है तो इन सभी की गैस सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार सहित 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मई महीने में अब तक सामान्य से 170% अधिक बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी चंपारण जिले के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर से जिला आसूचना इकाई और एसटीएफ की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के मोहम्मदपुर खाजे गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा जिले के चेवारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सफी ईमान और उसके भाई को 3 वर्ष पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है। अररिया सदर अस्पताल में नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जिलाधिकारी विनोद धुहन की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल परिसर में LED डिस्प्ले और कूलर युक्त RO लगाने सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि विद्यापति के नाम पर रखा जाएगा। जनाब चौधरी आज दरभंगा हवाई अड्डा की हिफाजत सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को मुंतकिल किए जाने के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय तैयारा हादसा अथॉरिटी के अफसरान के साथ होने वाली मीटिंग में दरभंगा हवाई अड्डे को बैन अलाक़वामी हवाई अड्डे की शक्ल में फ़रोग देने का मुतालबा करेंगे। जनाब चौधरी ने ज़िला के शोभन में एम्स के तामीराती काम की रफ़्तार का भी जायज़ा लिया। साथ ही उन्होंने DMCH में चल रहे काम की रफ्तार के पेश नज़र भी अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। बिहार कानून साज काउंसिल की भोजपुर और बक्सर मकामी अथॉरिटी सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती जारी है। हमारी नुमाइंदा ने बताया कि आरा के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल वाक़ रायशुमारी मरकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच वोटों की गिनती जारी है। ताज़ा इत्तला के मुताबिक पहले मरहला में किसी भी उम्मीदवार को वाज़ह अक्सरियत नहीं मिल सकी, जिसके बाद दूसरे मरहला के वोटों की गिनती की जा रही है। इस सीट के लिए 12 मई को वोटिंग हुई थी। गौरतलब है कि यह सीट साबिक रुकन कानून साज कौंसिल राधा चरण शाह के कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब होने के बाद खाली हुई है। पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार ज़िलों में आज शहरी हिफाजती मशक के तहत ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का इनाकात किया जाएगा। मॉक ड्रिल शाम 7 बजे से 7:15 तक होगा। इस दौरान इमरजेंसी खिदमात को छोड़कर सभी प्राइवेट लाइटें बंद कर दी जाएंगी। इंतजामिया ने लोगों से मॉक ड्रिल में तआवुन की अपील की है। तेल कंपनियां रियासत में अब 10 लाख से ज़्यादा आमदनी वाले सार्फिन को गैस सब्सिडी नहीं देगी। इस सिलसिले में IOCL, BPCL और HPCL कंपनियों की जानिब से सार्फिन के रजिस्टर्ड मोबाइल पर यह पैगाम भेजा जा रहा है। बिहार रियासती LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन से मौसूला इत्तला के मुताबिक तेल कंपनियों की जानिब से भेजे जा रहे पैगाम में 7 दिनों के अंदर रद्द अमल मांगा गया है। अगर कोई सारिफ एतराज़ नहीं करता है तो इन सभी की गैस सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। एयर इंडिया ने बैनुल अक्वामी उड़ानों की तादाद में कमी करने का फ़ैसला किया है। इसके लिए बैनुल अक्वामी रास्तों पर कुछ खिदमात गैर मुअय्यना तौर पर रोक दी गई है। ये फैसला फ़ज़ाई हदूद कंट्रोल और हवाई ईंधन के ऊंची कीमतों को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस साल जून से अगस्त तक के लिए होगी। महकमे मौसमियात ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल मई माह में रियासत में अब तक मामूल से 170% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। मशरिकी चंपारण ज़िला के छतौनी थाना हलका के बरियारपुर से ज़िला इंटेलिजेंस यूनिट और STF की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 5 असलाह स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर ज़िला के मोहम्मदपुर खाजे गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब बनाने की फैक्ट्री का इंकशाफ किया है। मौके से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। शेखपुरा ज़िला के चेवारा थाना हलका से पुलिस ने जन स्वराज पार्टी के ज़िला सदर मोहम्मद सफ़ी ईमान और उसके भाई को 3 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है। अररिया सदर अस्पताल में शहरी सहूलतों को तौसी दी जाएगी। ज़िला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन की सदारत में मरीज़ फलाह कमेटी की मीटिंग में अस्पताल कैंपस में LED डिस्प्ले और कूलर वाले RO लगाने समेत कई दीगर तजावीज़ को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही इलाकाई ख़बरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने ही वाले हैं। अब समय है दोपहर समाचार का। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता बीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेश

0: कृषि विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
0: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराखची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन

0: पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज शी जिनपिंग के साथ बातचीत में ट्रंप

0: ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में चिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 300।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म ताल से, आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण के।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं क्रांति फिल्म से, जिसे शुरू से सवारा है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। श्रोताओं, आपको हम सुनवा रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म का यह गीत। आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक के।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश में सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाज में ये गीत फिल्म हमराज से।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। दिन के 3 बज चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। गायक कलाकार हैं हरिहरन।

सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग संपन्न हुआ। कलाकार थे हरिहरन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:25 हो चुके हैं। अब से लेकर संध्या 5 बजे तक हमारे इन मीटरों पर आप सुन पाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम को।
1: मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ अहम इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं होती।
2: सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं और दोस्ती यही मांगती भी है। अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
1: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
2: चलिए
3: बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई, प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है। छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान जब दोस्ती होती है तो।

का जब तक जोड़ सलामत साथ सलामत छोटी और बड़ी है तो क्या पांचों है तो हाथ सलामत एक एक के है पांच मुकद्दर तकलीफों से घबराना मत साझे जोड़ जवानी बचपन पांच से पांच

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा महेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं
0: जी।
1: तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं, हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब, सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है, हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया, हमारे ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है।

0: की सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं, सच कहूँ तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
1: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरापन गहरा सुनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
0: और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था, एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे। पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
1: बिल्कुल, अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
0: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
1: हाँ, तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
1: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
0: चलिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है। क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना इनकी कितना आसान ईएमआई पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीजें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं, कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीजों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है, अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।

0: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज है, जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है, अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए, एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
1: मैंने फिर वही कहूंगी कि किस्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किस्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना, तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किस्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किस्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किस्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे
0: बिल्कुल
1: जो
0: सही
1: हमें
0: कहा।
1: जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, उन चीजों से अगर बचना है तो या तो समय पर किस्त देनी है, उतनी आमदनी आपको
0: आमदनी
1: रखनी,
0: होनी
1: या
0: चाहिए
1: तो फिर किस्तों से ही बचना है।
0: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की तो
1: जी
0: किस्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या
1: हाँ
0: कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना,
1: जी
0: जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या
1: हाँ
0: इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हज़ार के नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हज़ार तक भी चली
1: और वो
0: जाती है।
1: जो 20,000 की चीज आपको खरीदनी थी, वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए,
0: हाँ बिल्कुल
1: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते हैं ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है क्योंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की उसमें महंगी पड़ जाती है और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं और पैसा भी डूब
0: बिल्कुल
1: जाता है।
0: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या है, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान हैं, जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी
1: जी
0: हो सकती है, जीएसटी कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किस्त तो हमें जानी ही है, फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे ईएमआई चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार कि किस्त
1: जी
0: बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
1: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
0: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप ईएमआई के पक्ष में हैं तो 10% का नियम अपनाना चाहिए, वो क्या है कि आप सभी ईएमआई का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा
0: चलिए
1: दें
0: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं गर्मी बहुत है।
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है। आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं। और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है, हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
0: जी
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते
0: तो
1: हैं।
0: उसके सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा

0: कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए, क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने।
1: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी हैं कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे, नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं, और एक बार कपड़े, जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई है कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
0: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें, सफेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहां जो प्रभावी हिस्सा है, जहां दुर्गंध ज्यादा आती है पसीने में, वहां रगड़कर धो लेना है, टमाटर है। इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है, नीम के पत्ते हैं उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबालकर, नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
0: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: सखी सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला। लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ये है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी, तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है, तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: फूल लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप

0: क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जी जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन है। आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें, आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई आपकी, तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं। और बहुत खूब, आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
1: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
0: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
1: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन से झूठ मत बोलो खुदा

0: हेलो फरमाइश
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहा है, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मरिया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।

0: हूँ।
1: जमील भाई नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
1: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
0: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
1: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
0: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
1: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
0: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
1: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
0: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
1: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
0: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
1: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
0: टीम का नाम है महबूब मेहदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल गुनगुनाइए।
0: ये जो चिलमन है

0: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
1: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
0: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
1: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
0: हेलो परमाइश छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
0: नहीं नहीं ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
0: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
0: मेरा माँ है पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, तो थोड़ा सा देखभाल करती है तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
1: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
0: हाँ तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात मंदिर है माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
1: अच्छा।
0: तो ये से बहुत ही लोग आती है वो तो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी का आसपास बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
1: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या बारह महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
0: किसी भी समय में आप कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
1: अच्छा ये बताएं कि आज आपने हैरो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
0: जी जी मेरे को गाना सुना दीजिए, साजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है बंगाली भाषा
1: जी,
0: तो बंगाली लोग रहती है तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है हिंदी भाषा सीख जाती है
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
1: और विश्वजीत जी आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा, और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी बहन जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: बताएं जरा अपने
1: बस
0: बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूलों वाला काम डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में
1: जी
0: आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं। अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जात?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हाल चाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है,
0: अच्छा
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम
1: नहीं,
0: मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: अरे

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफ अली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो भी भारतीय का सुनने वाला हूँ। मैं घाट को ऊपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट को ऊपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो इतना जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ। ऐसे ही जुड़े रहें और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, फेमस है उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं, अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जोहर आल अली जोहर आल अली जोहर ए अलिफ पे सो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी
0: नमस्ते जी। नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी। मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल है?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम
1: जी
0: होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम? कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी।
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है, मन चाहे गीत,
0: जी जी जी जी
1: और
0: बिल्कुल।
1: आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए है, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है।
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियां मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप से आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप से। और अगर हम कहीं बाहर भी जाए ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है, पहले सेहतनामा आता था, अभी सैटेलाइट के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड हैं।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं खेत से कर रहे हैं क्या?
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं, खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश पाटकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मत राज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी, आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली तो वो छुट्टी जो है हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
1: आपकी आवाज सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सेपान दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है
1: अमरावती विदर्भ में, बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: उड़ी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब के आवाज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की। उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी
1: लाई का
0: अपनी शॉप है
1: जमा कोट वगैरह अभी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों? लेडीज जेंट्स।
1: जेंट्स।
0: अच्छा
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात है।
1: लेकिन इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है स्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हालचाल हैं, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिक द्वारा श्रीनाथ जी का शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है उदयपुर में ही, हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है। जोत भी वहीं वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, हवस मूवी से।

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो बात पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती
1: जी,
0: में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर दो सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून लगाते कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बंद है।
0: हाँ तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो अब ये बताएं दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल दे गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हसी रात फिर हो न हो।
0: कालजयी गाना है, इसके तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से। हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288 2867-0288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन है गुरुवार और हम सब मई महीने के दूसरे सप्ताह में पहुंच चुके हैं। देखते ही देखते समय कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मई की हल्की गर्माहट, शाम की नरम हवाएं और दिन भर की भागदौड़ के बाद यह सुहानी शाम अपने साथ एक नई ताजगी लेकर आई है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, खुश और उत्साह से भरपूर होंगे। मौसम भी इन दिनों अलग रंग दिखा रहा है। कहीं तेज धूप लोगों को हल्की हवाएं राहत दे रही है। ऐसे मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। खूब पानी पीजिए, हल्का भोजन कीजिए और अपने चेहरे की मुस्कान हमेशा बनाए रखिए। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी हमें खुद से बात करने का ही समय नहीं मिल पाता, इसलिए आज की इस खूबसूरत शाम में थोड़ा अपने मन का हाल भी जान लीजिए। अगर दिन थोड़ा थका देने वाला रहा हो तो मुस्कुराइए, क्योंकि हर शाम अपने साथ नई उम्मीद लेकर आती है। दोस्तों, अब समय है आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर एक नज़र डालने का। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए जानकारी, चर्चाएं, मनोरंजन और संगीत से भरपूर कई खास प्रस्तुतियां। कार्यक्रम की शुरुआत होगी चर्चा से, जिसमें हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में। इस चर्चा के माध्यम से हम इस विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने और जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि ये चर्चा आपको एक नई सोच से जोड़ने में मदद करेगी। इसके बाद कार्यक्रम में होगा हमारा रोचक स्तंभ डेली ट्रिविया, जिसमें आपसे आकाशवाणी संबंधित एक प्रश्न पूछेंगे। मित्रों, आज गुरुवार के खास स्तंभ में सुनाएंगे आपको हमारे युवा मित्रों से बातचीत के जरिए उनके ओबी रिकॉर्डिंग को, जो कि विषय पर्यावरण संरक्षण पर आधारित होगा। साथ ही फिल्मी गीतों को भी शामिल करेंगे आज के कार्यक्रम में। और अंत में होगा फन फैक्ट समसामयिकी और समापन बातचीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे चुना है हमने फिल्म जन्नत 2 से। गायक कलाकार का नाम है के।

दोस्तों, आज की चर्चा में हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्र कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, यह कार्यक्रम समाज के उन वर्गों के विकास और सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है जो लंबे समय तक शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों में पीछे रह गए थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी समुदायों को समान अवसर प्रदान करना और देश के समग्र विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। दोस्तों, किसी भी समाज की प्रगति शिक्षा से ही शुरू होती है, इसलिए इस कार्यक्रम में बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं को पोषण, स्वास्थ्य जाँच और प्रारंभिक शिक्षा जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान और छात्रवृत्ति योजनाओं के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को स्कूल और उच्च शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने और मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण पर भी विशेष बल दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि विद्यार्थी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों जैसे विज्ञान, गणित और कंप्यूटर शिक्षा से भी जुड़ सकें ताकि वे बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सकें। इसके अलावा मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, कौशल विकास और रोजगार के अवसर भी इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

सरकार का प्रयास है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है, जहां हर धर्म और समुदाय की अपनी पहचान और संस्कृति है। ऐसे में यह आवश्यक है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। यही इस 15 सूत्री कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है। समानता, शिक्षा और अवसरों के माध्यम से एक मजबूत और समावेशी भारत का निर्माण। आज के चर्चा में बस इतना ही दोस्तों। कार्यक्रम के अगले चरण में जावेद अली और साथियों की आवाज में सुनाते हैं आपको फिल्म तुम मिले का ये गाना।

0: के लिए यूं ही बने रहिएगा अपनी रेडियो दोस्त मानसी के साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
7: 8700001-4242।
0: मित्रों, अंतराल के बाद अब बारी है गुरुवार के खास स्तंभ में OB रिकॉर्डिंग सुनाने की, जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त मानसी और आज मैं स्टूडियो से नहीं बल्कि आपके बीच एक खुले वातावरण से जुड़ी हूं। आज का हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण, हमारी जिम्मेदारी। बढ़ता प्रदूषण, कटते जंगल, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और बदलता मौसम, ये सब संकेत हैं कि प्रकृति हमसे हमारी मदद की पुकार कर रही है। इसी विषय पर हम आए हैं हमारे कुछ दोस्तों के बीच स्टूडियो से बाहर, उनसे बातचीत के द्वारा उनकी राय जानने के लिए। हमारी पहली साथी हैं अर्णिका। तो आपसे पहला सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण का आपके अनुसार क्या अर्थ है?
8: पर्यावरण संरक्षण का मतलब है अपने आसपास की प्रकृति को बचाना और उसकी देखभाल करना। इसमें पेड़ पौधे, नदियाँ, हवा, मिट्टी, जानवर और पूरा प्राकृतिक वातावरण शामिल होता है। आज के समय में बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई और प्लास्टिक के अधिक उपयोग से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर हम समय रहते ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा और पानी नहीं मिल पाएगा। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। छोटे छोटे कदम जैसे कूड़ा सही जगह फेंकना, पानी बचाना और पेड़ लगाना भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो हम अपने भविष्य की रक्षा करते हैं।
0: बहुत सही बातें कही आपने, धन्यवाद अर्णिका। हमारे दूसरे साथी हैं मेहुल। आपसे हमारा प्रश्न है कि आज पर्यावरण को सबसे बड़ा खतरा किससे है?
9: आज पर्यावरण को सबसे बड़ा खतरा प्रदूषण और मानव गतिविधियों से है। फैक्ट्रियों का धुआं, वाहनों से निकलने वाली गैस, प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल और जंगलों की कटाई, ये सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नदियां गंदी हो रही है, हवा जहरीली होती जा रही है और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी बहुत अधिक गर्मी तो कभी असामान्य बारिश होती है। अगर हम इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आदतों में बदलाव लाएं।
0: जी बिल्कुल, यह सचमुच चिंता का विषय है। हमारे तीसरे साथी हैं नितिन। आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि युवाओं की पर्यावरण संरक्षण में क्या भूमिका हो सकती है?
10: युवा देश का भविष्य है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे जागरूकता फैला सकते हैं और दूसरे को भी प्रेरित कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज स्तर पर पौधारोपण अभियान, सफाई अभियान और प्लास्टिक मुक्त अभियान भी चलाया जा सकता है। युवा सोशल मीडिया के जरिए भी पर्यावरण से जुड़े संदेश फैला सकते हैं। अगर युवा अपनी जीवन शैली में छोटे बदलाव करें, जैसे साइकिल का उपयोग, पानी की बचत और प्लास्टिक से

0: परहेज तो बड़ा फर्क आ सकता है। जब युवा जिम्मेदारी समझेंगे तो समाज भी उनके साथ कदम से कदम मिलाएगा।
1: बहुत ही प्रेरणादायक विचार थे नितिन आपके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चौथी साथी हैं श्रेया। श्रेया, क्या आप बता सकती हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं?
2: हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई आसान तरीके अपनाकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। जैसे बिजली और पानी की बचत कर सकते हैं, प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और कूड़े को अलग अलग करके फेंक सकते हैं। पेड़ लगाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी इनकी देखभाल करना। ज़रूरत नहीं हो अगर तो आप अपने निजी वाहन का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, इसके बदले सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव बन सकते हैं। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो पर्यावरण की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, छोटे छोटे कदम सच में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और अब आखिरी प्रश्न हमारे पांचवें साथी गुलशन से, पर्यावरण संरक्षण हमारे भविष्य के लिए क्यों ज़रूरी है?
3: पर्यावरण संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए अनाज प्रकृति से ही मिलता है। अगर पर्यावरण दूषित होगा तो हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। अगर हम आज पर्यावरण को बचाएंगे तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसलिए यह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें।
1: धन्यवाद गुलशन, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो श्रोताओं, आपने ओबी रिकॉर्डिंग के जरिए हमारे दोस्तों की राय सुनी। पर्यावरण सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि हमारा जीवन है। अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो आने वाला कल मुश्किल हो सकता है, लेकिन उम्मीद अभी भी है क्योंकि बदलाव हमारे छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। इसी संदेश के साथ मैं मानसी इस ओबी प्रशासन से लेती हूँ अनुमति। धन्यवाद। आशा करती हूँ मित्रों, आपने इस ओबी के जरिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की होंगी। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले चरण की ओर, जिसमें हम आपको स्तंभ समसामयिकी के अंतर्गत देश दुनिया से जुड़ी जानकारियों से अवगत कराएंगे। भारत ने 2026 से 2033 के लिए IFAD संगठन यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर नया ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति दर 3.48% रही। साल 2026 में 10 मई को मनाया गया विश्व ल्यूपस दिवस का विषय मेक ल्यूपस विजिबल रखा गया था। हर साल की तरह इस साल भी 12 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गुजरात के अहमदाबाद, सरखेज और धोलेरा के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना रेल मंत्रालय के अंतर्गत लगभग 20,667 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित की जाएगी। आज के समसामयिक ज्ञान से बस इतना ही। मित्रों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे, जो हमारे स्तंभ डेली ट्रिविया के अंतर्गत आकाशवाणी से संबंधित प्रश्न था। हमारा प्रश्न था, आकाशवाणी में युवानी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? जिसका सही जवाब है 21 जुलाई 1969 को। यह सेवा सबसे पहले दिल्ली केंद्र से शुरू की गई थी। मित्रों, डेली ट्रिविया के बाद अब आते हैं कार्यक्रम के अगले स्तंभ फन फैक्ट की ओर, जिसमें हम आपको आकाशवाणी संबंधित एक रोचक जानकारी बताएंगे। क्या आपको पता है मित्रों, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में पहली और आखिरी बार 12 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टूडियो का दौरा किया। उन्होंने विभाजन के बाद कुरुक्षेत्र हरियाणा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोगों को संबोधित किया था। इस दिन को अब लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के फन फैक्ट सेगमेंट में बस इतना ही। अब पेश है फिल्म संगीत। जावेद अली की आवाज़ में फिल्म का नाम है राज 3।

दोस्तों, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के कार्यक्रम में आपने जो कीमती समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमने सुनी विशेष चर्चा, रोचक जानकारियाँ, डेली ट्रिविया, समसामयिकी और फन फैक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और शानदार फिल्मी गीत। साथ ही गुरुवार के खास स्तंभ में पर्यावरण से जुड़ी ओबी रिकॉर्डिंग भी सुनी। मित्रों, अगर आपको हमारे कार्यक्रम का कोई भी हिस्सा पसंद आया हो तो आप अपनी राय हमें ईमेल, पत्र या संदेश के माध्यम से भेज सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड नंबर 8120001। हमारा ईमेल एड्रेस है phair@gmail.com। दोस्तों, जीवन में सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए। हर नया दिन हमें कुछ नया सिखाता है और हर नई शाम हमें खुद से जुड़ने का अवसर देता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए और खुद पर विश्वास रखिए एवं अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखिए। अपना और अपने परिवार का इस बढ़ती गर्मी में खूब सारा ख्याल रखिए। हल्का सादा भोजन कीजिए और पानी ज़्यादा पीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। अब दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त मानसी को। शुभ संध्या एवं नमस्कार।

आप सुन रहे थे हमारे दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अजब प्रेम की गजब कहानी का ये लोकप्रिय गीत। इरशाद कामिल ने इसके बोल लिखे हैं। आवाज़ है आतिफ असलम की और संगीत है प्रीतम का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं कार्यक्रम में सुनिए ब्रह्मास्त्र फिल्म का ये गीत, तुषार जोशी और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके बोल लिखे हैं और संगीत है प्रीतम का।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं दबंग फिल्म का ये लोकप्रिय गीत। राहत फतेह अली खान और साथियों की आवाजें हैं। फैज अनवर ने इसके बोल लिखे हैं, संगीत है साजिद और वाजिद का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कार्यक्रम विवरण में अब आइए जान लें आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद संध्या ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। आज संध्या 7:10 पर कार्यक्रम लोकगीत में गायिका अमृता झा के गाई लोकगीत सुनेंगे आप। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार गोपाल कृष्ण मिश्र की प्रस्तुति। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनेंगे आप। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में कलाकार शाहिद परवेज से सितार वादन राग झिंझोटी में। और 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफ़र।

अब कल के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, कल प्रातः 5:48 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान। 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनेंगे आप। 6:35 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेंगे एक वार्ता, विषय है एक्जिमा का होम्योपैथिक उपचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। 6:40 पर कार्यक्रम रामचरितमानस गान सुनेंगे आप। प्रातः 7:00 से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे सबसे पहले सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में गायक कलाकार चंद्रशेखर की प्रस्तुति। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी कथा में एक पूर्व प्रसारित वार्ता, विषय है गांधी और वैश्वीकरण। वार्ताकार हैं डॉक्टर विजय कुमार। तत्पश्चात 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस दौरान आप जानेंगे कुछ ज़रूरी सूचनाएं, जैसे रेल सूचना, मौसम सूचना, कल का इतिहास, कल के समाचार पत्रों की कुछ प्रमुख सुर्खियां।

कल प्रातः 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुनेंगे गायक कलाकार ब्रजेश कुमार छाया की प्रस्तुति। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम लोकगीत में गायिका सुलेखा कुमारी के गाय लोकगीत। 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर फिल्म संगीत की खास पेशकश गुलदस्ता सुनेंगे आप। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेंगे आप। 1:00 आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में गायक कलाकार संजीत कुमार सिंह के गाय लोकगीत। 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

कल संध्या 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, 6 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी, 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में एक भेंट वार्ता, विषय है आंत के विभिन्न रोग कारण एवं निदान। भेंट वार्ताकार है डॉक्टर कुमार रत्नेश और भेंट करता है सचिन कुमार। 7:52 पर आप सुनेंगे कल सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी में गायिका कुमारी स्वर्णा घोष की प्रस्तुति। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में कलाकार उस्ताद बिस्मिल्ला खान एवं पार्टी से शहनाई वादन राग शंकरा में। 10:30 पर आप सुनेंगे आप श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: स्वागत है सभी श्रोता भाइयों बहनों का कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। सबको लाखों का नमस्कार,
1: साथ में अकलू के भी नमस्कार। लाखों भाई अपनो नमस्कार।
0: नमस्कार और हार्दिक स्वागत अकलू भाई। और सब सुनाइए, क्या हाल समाचार है?
1: सब चकाचक छो। अभी देख लो है, एक दो दिनों से झोड़ पानी जे दायर लो छो तो थोड़ा गर्मी से राहत मिल लो छे।
0: बिल्कुल,
1: तेनाम तो सब कुछ ठीक ठाक रहते।
0: बिल्कुल,
1: आरो खेतो सिने के अगर देखो तो हाल हो गेलो छे, कोई मूंग लगेलो छे तो कोई जंडो लगेलो छे, तेनाम जे छे ओकरो पानी के जे कमी छले वो पूरा हो गेले।
0: बिल्कुल अकलू भाई, देखिए हालांकि अपने देश भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो विविधताओं से भरपूर है, और उत्तर में हिमालय पर्वतमाला से लेकर दक्षिण के तटीय मैदान तक, और पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ तक, और ये भौगोलिक स्थिति और स्थलाकृति जो है और इसमें जो अंतर है, यही भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थिति का कारण है। हालांकि पश्चिमी प्रणाली में चार प्रमुख ऋतुएं होती हैं अकलू भाई, लेकिन भारतीय पंचांग में छह ऋतुओं को में विभाजित किया गया है, और यह प्रकृति, कृषि, त्यौहार, सांस्कृतिक परंपरा पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, और सभी ऋतुओं की अपनी अपनी अलग अलग पहचान भी होती है। अभी जो यह ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम चल रहा है, यह अपने साथ भीषण गर्मी लाती है।
1: हाँ,
0: और चमकते सूरज के तापमान को बढ़ा देती है, खासकर मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में, जिससे कि जलवायु अधिक शुष्क हो जाती है, नदियां तालाब सूखने लग जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पानी की कमी हो जाती है, और हमारे जो शरीर बने हुए हैं, इस पृथ्वी की संरचना हुई है पंच तत्वों से हुई है, जिसमें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये सभी जो हैं जीवन के आधार हैं, और उनमें से एक है जल, और अगर जल ही नहीं होगा तो जीवन की कल्पना कैसी और सृष्टि का निर्माण कैसा। इसलिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है।
1: तो यही वास्ते कह लिया कि देखो भाई, गर्मी के दिन छे तो सब तरफ जैसे सब कुछ तपलो छे, धरती तपलो छे, गाछ वृक्ष सब प्यासलो छे।
0: बिल्कुल,
1: एना में है जे दो चार दिनों से झोड़ पानी धायरलो छे, एकरा में सबके पानी के किल्लत छले थोड़ा थोड़ा दूर होलो छे।
0: बिल्कुल,
1: प्रकृति ने छे, जहाँ कुछ कमी बेसी होय छे तो प्रकृति ने ओकरा बराबर कर दी छे। अब गर्मी दिनों में पानी के कमी छले तो वर्षा झोड़ पानी एहन देलकै कि थोड़ा जे खाद कुइया भरी गेले, लेकिन है तो प्रकृति ने बराबर करे छे। लेकिन आदमी देखो कि हुनी जे छौ, एक तो जे छे तीन चौथाई पानी छे धरती पर, लेकिन पिए लायक जे पानी छे वो तो बहुत कम छे, 2-4% ही छे जे पिए लायक या काम करे लायक पानी छे। तो एना में पानी अगर बर्बाद करते तो केना होते, और प्रकृति ने कत्ता बराबर करते रहते हो, एना में की जरूरत छे? जरूरत छे हमरा सनी का सबका मिली बैठी का सोची करे सोचे ला कि पानी के किल्लत नहीं रहुआ, पानी जे छे ओकरो संरक्षण करो, यानी कि जल संरक्षण करना जरूरी छे।
0: जरूरी है। देखिए अकलू भाई, जल का महत्व इस बात पर भी काफी निर्भर करता है। देखिए पहले के जमाने के लोग, दुनिया में बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुई और प्राचीन नगर नदियों के किनारे बसे।
1: हाँ, कोनो भी जैसे सभ्यता दिखिला तो वो जे छे नदी के किनारे होलो छे,
0: और वहां से ही वो फले फूले। लेकिन

0: लेकिन आज विकास की आंधी दौड़ और विलासिता भरी जिंदगी में प्राकृतिक संसाधन का तो हम लोग जैसे कोई मोल ही नहीं समझ रहे हैं। जल जंगल जमीन खतरे में है और पशु पक्षी पहाड़ नदी समुद्र हवाएं भी खतरे में है। मनुष्य ने जिस तरह से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है अकलू भाई, अपने लिए खतरे की स्थिति उत्पन्न कर ली है। आज अधिकांश प्राकृतिक संसाधन समाप्ति की कगार पर है, जिनमें जल भी एक है अकलू भाई।
1: तो यही वास्तव कहलियो कि जल का बचाए रखना छे।
0: बिल्कुल,
1: जल जिसके वो जीवन के आधार छे, आदमी पशु पौधा सभ्य के वास्ते जल बहुत जरूरी छे। बिना जल के जीवन के तो कल्पना ही नहीं करलो जा सके छो, ठीक नहीं?
0: बिल्कुल,
1: आज जल के कमी एक गंभीर समस्या बनलो चली जा रहलो छे। यही वास्ते जल संरक्षण करना बहुत जरूरी हो गेलो छे।
0: बिल्कुल, जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है,
1: जल छे तो कल छे,
0: और पर्यावरण से ये धरती बनी है और इस धरती से हम लोग हैं। लेकिन पर्यावरण के साथ निरंतर खिलवाड़ का यह परिणाम हुआ कि आज दुनिया के अधिकांश देश अपनी आबादी को पीने का स्वच्छ पानी तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं।
1: बहुत तेनो देश है जहां पानी के बहुत ते ज्यादा किल्लत हो गलो छे।
0: बिल्कुल,
1: पानी वास्ते बहुत दूर दूर तक जाए छे। एनो पेना सुनवे करे लो कि पानी ले वास्ते जे छे कि वो गांव से बाहर दू दू चर चर कोस जाए के पानी भरे का लाने ले घड़ा में मथा उठा के निकल आवा तो तंटा है होलो छे कि बगलो में पानी मिली गेलो छे। लेकिन ओकरो दोहने इतना आदमी ने करे लगलो छे कि पानी जे छे लागे छे कि अब निकट भविष्य में खत्म हो जते।
0: बिल्कुल, देखिए
1: है भविष्य के वास्ते बचा के रखना छे ना।
0: बिल्कुल, और अपना देश भी इससे अछूता नहीं है अकलू भाई।
1: तो कहवे कर लियो,
0: तमाम रिपोर्ट इस बात को चीख चीख कर कह रही है कि यदि आज हम जल संरक्षण का उचित प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो भावी पीढ़ी को जल के एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा।
1: तो एना मा है समझेलना पड़ते कि सबसे पहला कि जल संरक्षण हो छे कौन ची। तो जल संरक्षण के अर्थ हो छे जल के सही उपयोग करना और ओकरा व्यर्थ होय से बचाना।
0: बिल्कुल,
1: जल का बचाय करी का भविष्य के वास्ते सुरक्षित रखना ही जल संरक्षण कहलावे छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए अगलो भाई, हमारी जिस रफ्तार से जंगल खत्म हो रही है उससे 3 गुना अधिक रफ्तार से जल के स्रोत सूख रहे हैं।
1: छेबे करे,
0: संकट वैश्विक स्तर पर साफ दिख रहा है और इसलिए दुनिया भर के देशों के साथ हमें जल संकट को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर विचार अवश्य करनी चाहिए। और इस जल संकट से निवारण के लिए हमें 3 स्तर पर विचार करनी चाहिए अकलू भाई।
1: की
0: पहला कि हम जल का उपयोग किस तरह से करते आ रहे हैं, और दूसरा कि यह भविष्य में इसका उपयोग कैसे करना है, और तीसरा कि जल संरक्षण के लिए हमने क्या कदम उठाए।
1: देखो लाखो भाई, सबसे पहला तो छै छे कि जल के जे कमी हो रहलो छे ओकरा मुख्य कारण की छे ना।
0: बिल्कुल,
1: अब देखो जना कि सबसे पहलो जे कारण छे उ तो जनसंख्या वृद्धि छे। ज्यादे ज्यादे जे जनसंख्या बढ़ी रहलो छे एकरा से जल के मांग बढ़ी रहलो छे, आ जल के मांग बढ़ी रहलो छे तो ये वास्ते जल के जे छे समस्या भी उत्पन्न हो रहलो छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: दूसरो अगर बात करो तो जल के दुरुपयोग छे। नल का बहुते देखे छो बहुते जे खुले छोड़ दी छे, पानी लेलको नल खुले छोड़ देलको, या फिर बेवजह पानी जे छे बही रहलो छे केकरो ध्याने नहीं जा रहलो छे। सरकार तक घर घर तक नल जल पहुंचा रहलो छे लेकिन कहीं कहीं खुल्लाम जे नल अगर बही रहलो छे और टोटी अगर टूटी गलो छे या कोनो कारण से पाइप फटी गलो छे तो ओकरा पर लोग ध्यान नहीं दे छे कि थोड़ा अपनो स्तर से ओकरा ठीक करवा दो, या फिर जे संस्था ओकरा ठीक करे छे ओकरा बोलियो दो। तो अगर एनहोस नहीं करते तभी ना जल बचते।
0: बिल्कुल,
1: जल के जे दुरुपयोग हो रहलो छे एकरा से जल के कमी हो रहलो छे। और तेसरो कारण छे वर्षा जल के संग्रह नहीं करना, बारिश के पानी व्यर्थ बही जा रहलो छे एकरा जे छे हमसनी संग्रह नहीं करा पा रहलो छे, या फिर संग्रह करे छे तो ओकरो जे छे मात्रा बहुत कम हो रहलो छे, यानी कि बहुत कम लोग जागरूक छे वर्षा के जल का संचय और संग्रह करे के वास्ते। यो एक कारण छे जल के कमी होय के।
0: और
1: सबसे बड़ो कारण छे प्रदूषण। नदी और तालाब

0: कचरा और गंदा पानी डालला से या फिर मिला देला से जे छे पानी प्रदूषित होलो छे, गंदा होलो छे, एकरा कारण भी जल जे छे ओ ओकरो कमी बनलो छे। जल के कमी मतलब की होले, अच्छा जल के कमी जे कि हमरो उपयोग दैनिक उपयोग में आवे छे या फिर पानी पिए के जे हम सनी उपयोग करे छे तो ओकरो कमी होलो छे। तो है सनी मुख्य कारण होले जे कि जल के कमी होलो छे।
1: बिल्कुल, ऐसे में हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी जल उपलब्ध हो इसके लिए हमें कई कदम उठाने होंगे, जैसे कि घरेलू स्तर पे जो हम उचित और संयमित उपयोग करें और इस्तेमाल किए गए पानी को भी हम उपयोग में ला सकते हैं। हाँ? अपने बाग बगीचों में डाल सकते हैं।
0: जना देखो कि रसोई घर में जे का पानी के उपयोग कर लेके बर्तन उर्तन धुल के ओकरा से पानी बहल है, ओकरा से फुलवारी हिंडा या बगीचा हिंडा या पिछवाड़ी में दो चार टू गाछ लगे लो होते, क्यारी लगे लो होते, ओकरम पानी बहाय दो ताकि वो पौधा पानी मिली जाए।
1: बिल्कुल, और वर्षा का जल भी हम लोग संचय कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: उससे क्या है कि हम अपने पशुओं को भी नहला सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं। और तीसरी बात कि हम लोग जल संग्रह करके जो है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं जिससे साफ जल को हम बचा सकते हैं।
0: आरु लाखों भाई छे कि नल आरु टंकी में अगर कोनो लीकेज हो रहा छे तो ओकरा तुरते ठीक करवाएला के ना कि देखो अगर तो है सोचे छे कि सब है कि हो एक के बूंद ना पानी गिर रहा छे, ठोपा ठोपा एक एक बूंद गिर रहा छे, लेकिन हो एक बूंद अगर बाल्टी में जमा करो तो महीना भर में लगभग जे छे 500 लीटर पानी जैसे बर्बाद हो जाए छे। एक बूंद पानी भी बहुत कीमती हो छे। यह वास्ते अगर कहीं भी नल में या टंकी में अगर छेद हो गलो छे तो रात तुरते ठीक कराना चाहिए। आरु आरु ओकरो बात की छे कि हमरा सनी का कम पानी में काम करे के आदत भी डालना चाहिए।
1: बिल्कुल, और पानी को पुनः फिर धरती में वापस जाए इसके लिए हमें जलाशयों का तालाबों का निर्माण भी अवश्य कराना चाहिए।
0: आरु जैसे जलाशय के निर्माण जरूरे कराओ लेकिन साथ ही साथ यो ध्यान रखना छे हमरा सनी का कि नदी तालाब में कचरा नए डालना चाहिए।
1: बिल्कुल, और साथ ही आजकल देखिए कि सिंचाई के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग हो जाता है, तो कई बार ऐसे कुछ फसलें होती है जिसमें सीमित पानी भी या उसके तरीकों को बदलकर हम जैसे कि टैंक द्वारा या ड्रिप विधि का प्रयोग करके।
0: हाँ, ड्रिप विधि से। और देखो जो खेतों में टपक सिंचाई के प्रयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: ओकरा से पानी कम बर्बाद हो।
1: बिल्कुल, और कहा जाता है कि जल संरक्षण आज समूचे दुनिया के लिए अहम चिंता का विषय हो गया है अकलू भाई। तो प्रकृति हमें निरंतर वायु जल प्रकाश आदि शाश्वत गति से दे रही है, लेकिन हम प्रकृति के इस नैसर्गिक संतुलन को बिगाड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। पानी को बचाने की दिशा में हमें पहले से चेत जाने की जरूरत है, क्योंकि रहमन पानी राखिए।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: Work from home? High salary? Bas ek click mein. Arre wah!
3: Fussy!
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700001

0: काशी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
2: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
3: बिल्कुल, अभी हम लोग जल संरक्षण के बारे में बात कर रहे थे। जल संरक्षण, प्रकृति के जितने भी अमूल्य उपहार हैं उनमें पेड़ पौधे भी आते हैं अकलू भाई। तो पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को बनाए रखते हैं और धरती पर हरे भरे रखते हैं, उनसे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है और विभिन्न प्रकार के जीवों के रहने का जो बसेरा होता है वो भी बना रहता है। तो पर्यावरण गीत के माध्यम से आइए हम अपने श्रोताओं को मनोरंजन करते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिल्कुल,
2: संदेश के सुनला के बाद एक बार फैनुसा सभी श्रोता भाई बहन के स्वागत करे छे हुनको पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। और देखो हम असनी बात कर लो लिए जल संरक्षण के बारे में ना। और देखो जल संरक्षण के ना होते जबकि हम असनी पेड़ पौधा लगे हुए यानी कि चारों ओर जब हरियाली ही हरियाली फैलते तभी ये वास्ते हमारा सबका मिली करी का आज के यो प्रण लेना छे कि सब ना कम से कम एक पेड़ जरूर लगावो ताकि धरती के हरियाली बनलो रह। और जब धरती हरा भरा रहता हो तब बादल का आकर्षित करते और बादल जब आकर्षित होते तो झोड़ पानी पड़वे करते और जब झोड़ पानी पड़ते तो धरती पर जे जल संरक्षण और जल संचय बहुत बढ़िया सा होते ना।
1: बिल्कुल, और आपनो अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी हरियाली बनी रहे।
2: तो चलो यही से संबंधित एकटा मसनी पूर्व प्रसारित वार्ता सुनी छे दयानंद चौधरी से जल जीवन और हरियाली विषय पर।
3: पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन प्रकृति के विभिन्न उपहारों व उसकी सेवाओं के कारण ही संभव हुआ है। ये उपहार हमें जल, वायु, खनिज, कोयला, वन, खेती, वन्य प्राणियों के रूप में उपलब्ध है जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन की संज्ञा भी देते हैं। अतः सभी घटक जो जीवन के लिए आवश्यक है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो वस्तु मानव को बार बार सहायता पहुंचाती है या मानवता की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। मानव पर्यावरणविद एन.एस. जिन्सबर्ग के शब्दों में प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सभी स्वतंत्र वस्तुएं जो मानव की क्रियाओं की परिधि में आती हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसके बिना हमारा जीवन विलुप्त हो जाएगा। इसलिए हमें जितना हो सके उतना जल का संरक्षण करना चाहिए। जिस दिन जल की समाप्ति होगी उसी दिन पृथ्वी पर सजीव प्राणियों का भी मृत्यु हो जाएगी। जल ही जीवन है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि धरती पर सभी जीवित प्राणियों के लिए जल अमृत के समान है। जल के बिना धरती के किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। हमारी धरती पर वैसे तो 70% जल ही है जो कि हमें भूमिगत नदियों, तालाबों और वर्षा के पानी से उपलब्ध होता है, लेकिन दिनों दिन वर्षा की कमी के कारण भूमिगत जल में कमी आ गई है जिसके कारण पूरे विश्व में पानी की किल्लत हो गई है। अगर इसी तरह जल का दुरुपयोग होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब जल की कमी से पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, पृथ्वी पर से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। अर्थशास्त्रियों की माने तो तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए ही लड़ा जाएगा जो कि एक बहुत गंभीर विषय है। हमें जल बचाने के

लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य के शरीर का 70% हिस्सा जल ही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर जल नहीं होगा तो क्या हो सकता है। जल के बिना पूरा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। मनुष्य भोजन के बिना कई महीनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना उसकी 1 सप्ताह के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। आज मानव द्वारा जल को प्रदूषित किया जा रहा है। नदियों, तालाबों, नहरों में नालों का पानी छोड़ दिया जा रहा है। हमें जल को बचाने की जितनी कोशिश हो सके उतनी करनी चाहिए। जब भी आपको किसी नल से पानी बहता दिखे तो तुरंत उस नल को बंद कर देना चाहिए। भूमिगत जल तो पहले से ही कम हो चुका है। हमारे देश में ज़्यादातर राज्यों में डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब इन राज्यों में पानी की काफ़ी किल्लत है। अगर आने वाले कुछ सालों में इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यहाँ पर भूमिगत जल का स्रोत विलुप्त हो जाएगा। नगरीकरण और औद्योगिकरण की तीव्र गति व बढ़ता प्रदूषण तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। प्रतिवर्ष यह समस्या पहले के मुकाबले और बढ़ती जाती है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं कि बस जैसे तैसे गर्मी का सीजन समाप्त हो जाए, बारिश आते ही समस्याएं दूर हो जाएंगी। आगामी वर्षा में जल संकट की समस्या और अधिक विकराल हो जाएगी, ऐसा मानना है विश्व आर्थिक मंच का। शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता और संबंधित ढेरों समस्याओं को जानने के बावजूद देश की बड़ी आबादी जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं है। जल है तो कल है, बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जा रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुमूल्य संसाधन है जल, या यूं कहें कि यह सभी सजीवों के जीने का आधार है। जल धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इनमें 97% पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में मात्र 1% पानी ही मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध है। जल जीवन हरियाली की जागरूकता अभियान में केंद्र एवं राज्य सरकारें महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से संबोधित करते हुए कहा कि पेयजल की सुरक्षा के लिए जल जीवन मिशन की नई योजना के बारे में बताया। जाने क्या है ये मिशन, जिसमें 3.5 लाख करोड़ की लागत लगेगी। उन्होंने कहा, आज देश में आधे से अधिक घर ऐसे हैं जिनमें पानी का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। उनके जीवन का बड़ा हिस्सा पानी लाने में ही खप जाता है। इस सरकार ने हर घर में जल पीने का पानी लाने का संकल्प लिया है। आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्षा का पानी को रोकने के लिए समुद्री पानी, माइक्रो इरिगेशन, पानी बचाने का अभियान, सामान्य नागरिक सजग हों, बच्चों को पानी की महत्ता की शिक्षा दी जाए। प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि 70 साल में जो काम हुआ है अगले

0: पांच वर्षों में उससे पांच गुना अधिक काम हो, हमें इसका प्रयास करना है। हमें खुद ही जागरूक होकर जल को बचाना होगा, क्योंकि जल का दोहन केवल सरकार नहीं करती, हम सब लोग करते हैं। हम ही जल का अत्यधिक दोहन करते हैं और हम इन्हीं से को प्रदूषित करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस अमूल्य जल को बचाएं और ऐसे कदम उठाएं जिनसे भूमिगत जल की मात्रा में बढ़ोतरी हो सके। जल को बचाने के लिए हमें अनावश्यक कार्यों में जल का उपयोग बंद करना होगा। वर्षा के जल को टांके बनाकर संग्रहित करना होगा। उद्योग धंधों से प्रदूषित जल जिस नदी में मिलाया जाता है उनको सख्त हिदायत देनी होगी कि नदियों में दूषित जल न मिलाएं। हमें खुद की दिनचर्या में सुधार करना होगा, क्योंकि हम नदियों या तालाबों के पास जाते हैं उनमें कचरा एवं पत्थर फेंकने लगते हैं जिनसे उनका जल प्रदूषित हो जाता है। हमें गैर कार्यों जैसे वाहनों का धोना, मिट्टी पर पानी का छिड़काव करना आदि में पानी का उपयोग करना बंद करना होगा। हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे सभी नदियों को जोड़ा जा सके, जिससे देश के किसी भी हिस्से में जल की कमी ना हो। हमें जागरूक होना होगा, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर पानी की टंकियों से जल का रिसाव होता रहता है, जिसको हमें बंद करना होगा, क्योंकि पानी की बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और पानी की बूंद बूंद बचाकर ही हम जल का संरक्षण कर सकते हैं।
1: हाँ, तो कितना अच्छा बात बतेलकै कि जल संरक्षण करे वास्ते हमरा सनी का अपनो अपनो स्तर से सोचे ल पड़ते आरो सबके एकरा में हाथ बटावे ल पड़ते।
2: बिल्कुल,
1: तभी जे छे सबके जीवन बचलो रहते आरो है धरती जे छे धरती पर हरियाली भी बनलो रहते। इतना अच्छा वार्ता वास्ते वार्ताकार दयानंद चौधरी जी का बहुत धन्यवाद दे छे। और लगले हाँ जे छे हम सनी एकटा देवी गीत सुनै छियै।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: संदेश का सुनला के बाद जिसो आब चलो आरो कुछ बात कर लीजिए, जना कि अब मौसम सूचना होले वो जरूरी है ना। मौसम देखे छो कखनी पलटी मार दे छै, केकरो ठिकाना नहीं दे छै, तो ये वास्ते मौसम सूचना भी जरूरी छै। तब मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13-17 मई के दौरान जे छै जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले के आरु हल्का से मध्यम वर्षा हुए के अनुमान छे। ज्यादे ज्यादे तापमान 34-36 डिग्री सेंटीग्रेड आरु कम से कम तापमान 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना छे। सापेक्ष आर्द्रता भोर में 70-75%, जबकि दोपहरिया में 30-40% रहे के संभावना छे। पूर्वानुमान के अवधि में 10-16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के संभावना छे।
4: बिल्कुल, और आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक झूमर।

0: बिल्कुल, देखिए अकलू भाई कितना सुंदर झूमर हम लोगों ने अभी सुना।
1: देखो झूमर सुने में तभी आनंदित हो जबकि सब कुछ ठीक ठाक रहते, खास
0: जी
1: करके मौसम ठीक रहते तभी ना।
0: मौसम, खेती बाड़ी, जैसे कि देखिए अभी मूंग का समय है, मूंग एवं उड़द की फसल में जो रस चूसक कीट माहू होते हैं और हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी हमें करनी चाहिए। बचाव के लिए मेलाथियॉन 50 EC या डाईमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव वर्षा ना होने की स्थिति में हमें करनी चाहिए। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
2: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

0: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर बता रहे हैं और संकोच नहीं करना है कि हम फोन करें कि नहीं करें। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। आप दिल खोलकर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं। कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया और इस समय पिछले 2 सालों से नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गांव जैसे जगहों पे। पर अब धीरे धीरे, खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से, लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ, रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है जिससे उनको माता

0: पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
1: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
0: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली NCR से भी पेशेंट आ रहे हैं।
1: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे, कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके, और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
0: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना? तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायने नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन है, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, ICUs में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर ICUs हैं, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों का इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये, ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है, ऑफ कोर्स, जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे के हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है, तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहाँ पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है, तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए,
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर

0: आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से 6206803040 6206803040 ये नंबर है। इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है? क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
1: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मेल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयाँ जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामणि, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
0: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, 6206803040 6206803040 ये नंबर है। तो बस आज हमें, यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान,
0: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: बिल्कुल, और अखलू भाई, आज के कार्यक्रम का समय अब यहीं पे संपन्न होती है, सबको लाखों का नमस्कार।
4: सभ्य का, अखलू के भी नमस्कार। आप सुन रहे थे हमारे दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी, प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: हमारे रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण का अभियान होगा शुरू। झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे शामिल। झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को किया अनिवार्य। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू करने के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में किया ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए सीसीएल को मिला ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया प्लैटिनम अवार्ड। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से, शाम 7:30 बजे से मैच होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 23 मई 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें संबंधित बीएलओ के नाम और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध रहेंगे। राज्य में प्रत्येक पात्र मतदाता का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर सचिव सुबोध कुमार ने बताया कि झारखंड में वर्तमान में कुल 2,64,89,777 मतदाता हैं तथा एसआईआर कार्य में 29,571 बीएलओ और 21,644 बीएलए लगाए गए हैं।
1: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरी सहित झारखंड में थर्ड फेज के एसआईआर का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसी क्रम में अगले 23 मई को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप अनमैप्ड सूची का अवलोकन जरूर कर लें। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाएंगी और जाकर सत्यापन का काम करेंगी।
0: रांची में उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के बीच आधिकारिक किट का वितरण किया। उन्होंने बताया कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन और मकानों के सूचीकरण प्रक्रिया 16 मई से 14 जून 2026 तक चलेगी, जिसमें प्रत्येक मकान और परिवार का डिजिटल माध्यम से विवरण संकलित किया जाएगा। उधर जामताड़ा में भी जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर पटोदिया धर्मशाला में पोर्टल के माध्यम से स्वगणना शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि चैंबर के सदस्यों के सहयोग से शिविर में आकर लोगों ने सहज ढंग से स्वगणना कार्य संपन्न किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपर पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को अनिवार्य किया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अब ऐसे मामलों की जांच एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बजाय न्यायिक जांच के माध्यम से होगी। अदालत ने झालसा को एनएचआरसी की गाइडलाइन के अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने का निर्देश देते हुए वर्ष 2018 से 2025 के बीच हुई हिरासत में मौत के मामलों की रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में न्यायिक जांच नहीं हुई है उनमें संबंधित जिला जज कारण बताते हुए उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपेंगे।

0: झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जनता के बीच एक समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से नियमितीकरण ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
1: हेमंत सोरेन की सरकार ने शहरी क्षेत्र के उन लोगों के बारे में भी गंभीरता से सोचा और उनको राहत देने का प्रयास किया। तो जनता से अपील करना चाहूंगा कि अनुमानित झारखंड के 7 लाख वैसे घर जो अनियमित हैं, वो इस योजना का लाभ लें। जो नागरिक शुल्क देकर अपने अनियमित भवनों का नियमितीकरण करना चाहते हैं, राज्य सरकार उनके मान सम्मान की रक्षा करेगी।
0: जमशेदपुर के CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में CSIR NML के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य निर्माण में अनुसंधान की भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने समावेशी विकास के लिए उत्तरदायी नवाचार विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि तकनीक का विकास स्थानीय जरूरतों और मानव कल्याण को ध्यान में रखकर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वास्तविक तकनीकी प्रगति वही है जो मानव जीवन को बेहतर बनाए और पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL को हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए ग्रीन टेक CSR इंडिया प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में CCL की CSR टीम ने यह पुरस्कार प्राप्त किया जो ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में कंपनी के योगदान के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर आए। इस मौके पर उन्होंने जमानत मिलने पर न्यायालय का शुक्रिया अदा किया।
3: हमने कहा कि सबका जय होती है, नौसर का जय होकर जाएगा। आज हम बेल पर आए, न्यायालय का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारा ये देखकर बेल उन्होंने दिया है और आगे की जो प्रक्रिया है मैं इस बात का ही कह सकते हैं जो आज क्या हम बनाए, लेकिन हमें जो विश्वास है वो सत का जीत होती है और होगी।
0: वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आलमगीर आलम को मिली अंतरिम जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे बाइज्जत बरी नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर कड़ी शर्तों के साथ राहत मिली है, जबकि मामले की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। झारखंड विधानसभा के पूर्व मंत्री और गोमिया के पूर्व विधायक स्वर्गीय माधव लाल सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बोकारो जिले के गोमिया स्थित साड़म पश्चिमी बोकारो नदी में आयोजित इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पुलिस बल ने अंतिम सलामी दी। मौके पर उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद, उपायुक्त अजय नाथ झा समेत जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कई राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। क्रिकेट। IPL क्रिकेट में आज पंजाब

0: किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण का अभियान होगा शुरू। झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे शामिल। झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को किया अनिवार्य। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू करने के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में किया ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए CCL को मिला ग्रीन टेक CSR इंडिया प्लैटिनम अवार्ड। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से, शाम 7:30 बजे से मैच होगा शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायिका अमृता झाई के गाए लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए एक झूमर।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकगीत में गायिका अमृता झा की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया की

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा सीआईएसएफ को मिली कवि विद्यापति के नाम पर होगा हवाई अड्डा। विधान परिषद

0: पार्षद के भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव में जदयू को हराकर राजद ने जीत दर्ज की। विक्रमशिला सेतु की मरम्मत का काम शुरू, महीने के अंत तक परिचालन शुरू होने की संभावना। और मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। श्री चौधरी आज दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को हस्तांतरित किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की मांग की जाएगी।
1: हमने अगले सप्ताह एक बैठक रखा है जिसमें सिविल एविएशन के सभी पदाधिकारी भारत सरकार से आएंगे। मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ कि दरभंगा का जब एयरपोर्ट उद्घाटन होने लगेगा तो दो मांग जो यहाँ पर आई है, बाबा विद्यापति जी के नाम पर यहाँ का एयरपोर्ट हो उसको जरूर कराने का प्रयास करूँगा। और दूसरा जो एयरपोर्ट है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवाने का उसी दिन प्रयास करूँगा।
0: श्री चौधरी ने जिले के शोभन में एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने टीएमसीएच में चल रहे कार्य की प्रगति को लेकर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर सबक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट के उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जीत दर्ज की है। उन्होंने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को 354 मतों के अंतर से पराजित किया। यह सीट पूर्व एमएलसी राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। परिणाम घोषित होने के बाद राजद कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। उपचुनाव में राजद प्रत्याशी सोनू कुमार राय की जीत पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सभी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और नेताओं को बधाई दी है।
2: बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
0: पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिले में आज नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि नागरिक सुरक्षा अभ्यास किसी भी बाहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए लोगों को तैयार करने का अभ्यास है।
3: घड़ी की सुई में जैसे ही 7 बजे सायरन की आवाज से पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिले में जनजीवन थम सा गया। विद्युतापूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई। 15 मिनट तक ब्लैकआउट की स्थिति बनी रही। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई और गाड़ियों के हेडलाइट्स बंद हो गए। इस दौरान लोगों ने संयम दिखाते हुए प्रशासन का पूरी तरह सहयोग किया। एक बार फिर सायरन की आवाज बजने के बाद स्थिति सामान्य हुई। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से दिदेश्री।
0: देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की सूचना नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी।
4: एशिया क्राइसिस के लगभग 75 दिन हो चुके हैं और इसके चलते हमारे क्रूड, एलपीजी और एलएनजी इंपोर्ट अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के उद्देश्य से अपने कारकेड में वाहनों की संख्या घटाने का निर्देश दिया है। अब राज्यपाल के कारकेड में केवल 3 वाहन शामिल रहेंगे। पश्चिम एशिया में

0: महामारी संकट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों को भी अत्यंत आवश्यक होने पर ही सरकारी वाहनों के उपयोग का निर्देश दिया गया है। इधर नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। उन्होंने अन्य लोगों से भी ऊर्जा संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करने को कहा।
1: मुझको लगता है यथासंभव सबों को इसका अनुसरण करना चाहिए। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है और खुद भी फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, तो हम सबका भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय हित में जितना संभव हो एनर्जी सेव करें। सब लोग प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग जो एनर्जी कंजर्वेशन है उस दिशा में उसके लिए भी मदद करेंगे और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है।
0: खगड़िया जिला प्रशासन ने प्रत्येक शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में कर्मियों और अधिकारियों को बिना वाहन आने की अपील की है। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की 100 सदस्यीय टीम बेली ब्रिज का निर्माण कर रही है। BRO के अधीक्षण अभियंता विपिन कुमार चांद ने बताया कि क्षतिग्रस्त हिस्से के पास 24 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक सेतु पर परिचालन शुरू होने की संभावना है।
2: पहुंचना शुरू हो गया है, अब जो टेक्निकल कार्यक्रम है अलाइनमेंट सेट करके उस पर हम लोग लगने वाले हैं। सामान आने के बाद लॉन्चिंग वगैरह करने में 6-7 दिन 8 दिन 10 दिन का ऐसे समय लगता है, सब मिला करके बहुत सारे कार्यक्रम करने होते हैं इसके अंदर, तो हो जाएगा।
0: इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने भी मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: राज्य के अनेक भागों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों को 15 दिनों के अंदर निपटाने का आदेश दिया है। इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि 120 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का निष्पादन हर हाल में 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में टीबी के मरीजों को अब 30 दिनों की दवा एक साथ मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में टीबी की दवा उपलब्ध करा दी गई है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने राजद नेता की गिरफ्तारी पर कहा कि यह एक गंभीर मामला है, राजद के नेता छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
2: दिल्ली पुलिस ने पूरे भारत में सक्रिय एक ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का काम है नीट जैसी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र के नाम पे भोले भाले बच्चों को ठगना, और इस ठगों के गिरोह का मास्टरमाइंड है तेजस्वी का दुलारा राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल। तेजस्वी जी, अब आप क्या कहेंगे बताएं।
1: विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में सफल छात्रों को बधाई दी है। श्री कुमार ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। जदयू कोटे के मंत्री सप्ताह में 5 दिन पटना प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में मंत्री अशोक चौधरी, मदन सहनी और श्वेता गुप्ता ने लोगों की समस्याओं को सुना। राजगीर में लगने वाले मलमास मेले को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने राजगीर और हावड़ा के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन बिहार शरीफ, अस्थावां, परभिघा, शेखपुरा, केउल और भागलपुर के रास्ते चलेगी। हावड़ा राजगीर स्पेशल ट्रेन 16 मई से 17 जून तक तथा राजगीर हावड़ा स्पेशल ट्रेन 17 मई से 18 जून तक प्रतिदिन संचालित होगी। ट्रेन में शयनयान और साधारण श्रेणी सहित कुल 14 कोच लगाए गए हैं। किशनगंज जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे कलगलिया थाना क्षेत्र से एसएसपी और स्थानीय पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और भारत, चीन, कतर तथा सऊदी की करेंसी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी से जोड़कर जांच कर रही है। कैमूर जिले के भभुआ व्यवहार न्यायालय ने असम राइफल्स के सूबेदार मेजर शशि भूषण तिवारी की हत्या के मामले में 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। खगड़िया जिले के पसराह थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर ट्रक, कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने कार्य में लापरवाही बरतने और जनता की शिकायतों के प्रति नकारात्मक रवैये को लेकर 3 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। इसमें भर्राई के थानाध्यक्ष अरमोद कुमार सिंह, बिहारीगंज के कृष्ण कुमार सिंह और पुरैनी थाना के चंद्रजीत प्रभाकर शामिल हैं। पूर्वी चंपारण जिले के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर से जिला आसूचना इकाई और एसटीएफ की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र से एसटीएफ और पुलिस की टीम ने हथियारों के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले के महम्मदपुर खाजे गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा जिले के चेवारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सफी ईमान और उसके भाई को 3 वर्ष पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फंसे रोहतास के 28 मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया गया। इन सभी को वहां बंधक बनाकर काम लिया जा रहा था। इधर शेखपुरा में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। इन बच्चों के नियोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अररिया सदर अस्पताल में नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जिलाधिकारी विनोद तोहन की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल परिसर में LED डिस्प्ले और कूलर युक्त RO लगाने सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

0: की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने मॉडल स्कूल ओंकार प्रवेशिका विद्यालय केशरबाग का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यार्थियों की उपस्थिति कम पाए जाने पर उन्होंने अभियान चलाकर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने पठन पाठन स्मार्ट क्लास आईसीटी लैब की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा सीआईएसएफ को मिली, कवि विद्यापति के नाम पर होगा हवाई अड्डा। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव में जदयू को हराकर राजद ने जीत दर्ज की। विक्रमशिला सेतु की मरम्मत का काम शुरू, महीने के अंत तक परिचालन शुरू होने की संभावना। और मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया टोपी।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भोजपुर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
1: बिहार विधान परिषद के भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोजपुर और बक्सर में 12 मई को मतदान संपन्न कराया गया। कुल 6086 निर्वाचक मतदाताओं में 97.96% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना आज 14 मई को हुई, जिसमें राजद के सोनू राय ने जदयू के कन्हैया प्रसाद को 300 से भी अधिक मतों के अंतर से परास्त कर दिया है। यह सीट राधाचरण शाह के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। संदेश से जदयू के टिकट पर विधायक निर्वाचित होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस सीट से जदयू के कन्हैया प्रसाद, राजद के सोनू राय सहित 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे, जिनमें बागी उम्मीदवार भी शामिल हैं। भोजपुर जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य जारी है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से जरूरी आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने आम लोगों से अपील की है कि नागरिक सही सही जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना कर्मियों का सहयोग करें। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदने और पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करने की अपील की है। श्री मोदी की इस अपील पर जिले में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सर्राफा व्यापारी चिंतित हैं, हालांकि वे इस विषय पर बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। वहीं आम नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा है कि वे तेल, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल तथा सोना चांदी की खरीद से जुड़ी अपील के पक्ष में हैं। लोगों का कहना है कि यह कदम देश की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले दिनों जिले में तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गई और बिजली के खंभे भी उखड़ गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ तथा कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के कारण मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस मंत्रिमंडल विस्तार में भोजपुर से 2 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। आरा से भाजपा विधायक संजय सिंह टाइगर को इस विधानसभा कार्यकाल में लगातार दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। उन्हें उच्च शिक्षा सह विधि विभाग का प्रभार सौंपा गया है। वहीं जगदीशपुर विधायक श्री भगवान सिंह कुशवाहा को मंत्रिमंडल में नए चेहरे के रूप में शामिल किया गया है। उन्हें योजना एवं विकास विभाग का प्रभार सौंपा गया है।
0: और अब प्रस्तुत है बक्सर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर।
2: बक्सर जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य जारी है। प्रागण घर घर जाकर लोगों से जरूरी आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो 30 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि नागरिक सही से जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना कर्मियों को सहयोग करें। इससे पूर्व राज्य सहित जिले के 17 अप्रैल से 1 मई तक स्व जनगणना अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से पूछे गए सवालों का जवाब देकर जनगणना में भाग लिया। प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए बक्सर जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत उन्हें सहजने और डिजिटलीकरण की मुहिम तेज कर दी गई है। बक्सर में गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहिब की 100 वर्ष से पुरानी एक अनमोल पांडुलिपि प्राप्त हुई है। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन इन पांडुलिपियों को डिजिटीकरण और भौतिक संरक्षण पर विशेष जोर दे रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सहले ने सीताराम संग्रहालय का निरीक्षण करते हुए बताया कि यह अभियान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य चलाया जा रहा है। बीते दिनों जिले के व्यवहार न्यायालय में वर्ष के दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सोनी श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश काजल झा, डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस शिविर में सुलहनीय आपराधिक मामलों, वाहन दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, बैंक ऋण, बिजली विभाग से संबंधित मामले सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और आपसी सहमति के आधार पर सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया। बीते दिनों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इंटरमीडिएट 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में जिले के लगभग 10,000 छात्रों ने भाग लिया था। परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल देखा गया। जिले के हजारों विद्यार्थियों ने बेहतर अंक लाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। सफल छात्र छात्राओं ने उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की, वहीं शिक्षकों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
0: अभी आप सुन रहे थे भोजपुर और बक्सर जिले की हलचल। भोजपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा, जबकि बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता शशांक शेखर।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन लहरी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार गोपाल कृष्ण मिश्र की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए गोपाल दास नीरज का लिखा गीत।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार गोपाल कृष्ण मिश्र की प्रस्तुति। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए गुलजार के लिखे इस खूबसूरत गीत को, फिल्म लिया है हमने दिल से। ये गीत ए आर रहमान और साथियों की आवाज़ें हैं, ए आर रहमान का ही संगीत है।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप फिल्म संगीत का रजनीगंधा। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए फिल्म परदेश से। इस गीत को गाया है सोनू निगम, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन और साथियों ने। नदीम श्रवण का संगीत है, आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं।

0: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM 2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
1: श्रोताओं अब आइए सुनते हैं कविता सुब्रमण्यम और उदित नारायण की आवाज में देवदास फिल्म का ये गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं नुसरत बद्र ने और संगीत है इस्माइल दरबार का।

श्रोताओं, जोश फिल्म का अब ये गीत सुनिए। इसे गाया है अभिजीत ने, समीर ने इसके बोल लिखे हैं और संगीत है अनु मलिक का।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म कहो ना प्यार है का शीर्षक गीत। उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजें हैं, राजेश रोशन का संगीत है, इब्राहिम अश्क ने इसके बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये लोकप्रिय गीत।

श्रोताओं, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। जतिन ललित का संगीत है, आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं। ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को

0: बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: Our discussions must advance. हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
3: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्रतो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
4: इंडियन डो
5: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
6: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाए। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध

0: रिहायत स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं।

0: साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces special intensive revision phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience and build

0: उजागर किया। अमेरिका के सदर 3 रोजा दौरे पर चीन गए हुए हैं। चीन के इस दौरे पर उनके हमराह अमेरिका के कुछ बड़े कारोबारी लीडरान भी हैं, जिनमें निविडा के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेस एक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक शामिल हैं। इधर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रियूबियो ने आज चीन को मुतनब्बे किया है कि ताइवान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल एक फाश गलती होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सदर ट्रंप और सदर जिनपिंग की मुलाकात के बाद भी ताइवान के तई अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 से मुतालिक पेपर लीक के मामले में मुबैना खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में 2 मजीद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने पिछले 24 घंटे में मुल्क भर में 14 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। एजेंसी ने बताया कि 2 मुश्तबा अफराद की पहचान अहलिया नगर के धनंजय लोखंडे और पुणे की मनीषा वाघमारे के तौर पर हुई है। CBI ने बताया कि इस सिलसिले में कल 5 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए तमाम 5 मुलजमीन को दिल्ली में आज एक अदालत के सामने पेश किया गया और अदालत ने उन्हें पूछताछ की गरज से 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में दे दिया। दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान मुहिम का आगाज करेगी। ये मुहिम वजीर आजम की अपील के मुताबिक शुरू की जा रही है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि मुहिम के तहत लाजमी खिदमात के अलावा दिल्ली सरकार के तमाम दफ्तर हफ्ते में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
1: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे। ऑफिस टाइम को थोड़ा हमने सेग्रीगेट किया है ताकि सड़कों पे वाहन ट्रैफिक कम हो। हमने दिल्ली सरकार का अपना ऑफिशियल टाइमिंग है 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक का किया है और इसके अनुसार ही दिल्ली सरकार के सभी ऑफिसेज काम करेंगे।
0: एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के अजीत नारायणन ने गुजरात के गांधीनगर में आज मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में क्लीन एंड जर्क और मजमुई खेल में अपनी काबिले जिक्र कारकर्दगी की बिना पर कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। एशिया के चंद बेहतरीन वेटलिफ्टरों से मुकाबला आराई करते हुए अजीत ने गैर मामूली मजबूती का मुजाहरा किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी का 3रा मरहला शुरू होगा। कांग्रेस लीडर VD सतीशन ने गवर्नर से मुलाकात की और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के वाकयात में 70 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हमनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुज खोले जाने पर जोर दिया। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म अब्दुल्ला का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म अब्दुल्ला का गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आइए आपको सुनाते हैं फिल्म बाजार का ये लोकप्रिय गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है और श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म जाबाज का गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और सपना मुखर्जी ने।

श्रोताओं सुनिए कार्यक्रम में अब अगला गीत फिल्म रफू चक्कर से। इस गीत को गाया है शैलेंद्र सिंह और कंचन ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं कलाकार शाहिद परवेज से सितार वादन राग झिंझोटी में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में कलाकार शाहिद परवेज से सितार वादन प्रस्तुति। आपने सुनी राग झंझोटी में। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर। श्रोताओं, कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो साथी महताब। आप सभी के लिए कार्यक्रम में बहुत खूबसूरत फिल्मी गीत लेकर आया हूं, जो जुदाई, हिज्र और बेवफाई को बयां करते हैं। हिंदी फिल्म में ऐसे कई गीत हुए जिन गीतों के जरिए गीतकार ने एक मोहब्बत में बिछड़े दो प्रेमियों की दर्द को, उनकी तकलीफ को बयां करने की कोशिश की, और ये कई खूबसूरत और लोकप्रिय गीत के द्वारा किया गया। उन दर्द भरे नगमों में हम कुछ चुनिंदा नगमे आप सभी को सुनवाएंगे, लेकिन उस पहले गीत से पहले आइए सुन, आप सभी से साझा करता हूं मैं मशहूर शायर अहमद फराज की एक खूबसूरत गजल। उन्होंने एक बार कहा कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से का कोई समा जलाते जाते। कितना आसा था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसा था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। जश्ने मक्तल ही नहीं बरपा हुआ वरना हम भी, जश्न मक्तल ही नहीं बरपा हुआ वरना हम भी, पा बजला ही सही नाचते गाते। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते।

श्रोताओं, मोहब्बत में कई बार हमारा महबूब हमसे इम्तिहान भी लेता है, हमारी परीक्षा लेता है। लेकिन क्या ये परीक्षा किसी कागज़ कलम पर लिखे गए प्रश्नों के उत्तर

देने का है? नहीं, ये मोहब्बत इम्तिहान मोहब्बत में वैसे तो तय नहीं होता कि इसकी हद क्या होती है, लेकिन कई बार हमें अपने सब्र का इम्तिहान देना होता है, हमारे इंतज़ार का इम्तिहान देना होता है। मोहब्बत में इम्तिहान का मतलब ही इंतज़ार करना, समझना, सब्र करना और मुश्किल वक्त में साथ निभाने का है, लेकिन इसकी भी एक सीमा ज़रूर होनी चाहिए। तो यह मोहब्बत को गहरा तो करता है, लेकिन इम्तिहान का मतलब ये ना हो जाए कि बार बार खुद को साबित करना पड़े या अपनी इज्जत ही हम खो दें या दर्द सहते सहते इस कदर हम टूट जाएं कि हमें फिर हमारे अपने जो भावनाएं हैं वो ही हमसे खो जाएं, और सिर्फ इसलिए कि ये प्यार बरकरार रहे, ये मोहब्बत बरकरार रहे। बिल्कुल नहीं, तब वो मोहब्बत नहीं रहती, वो बस एक थकन बन जाती है। मोहब्बत की हद यहाँ वहाँ ख़त्म होनी चाहिए जहाँ पर इंसान खुद को खोने लगे। इसलिए ज़रूरी है कि उस इम्तिहान को हम हद तक ही रखें।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म लोफर का गीत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज में ये गीत है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर।

माना सफर और इस सफर में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त महताब। कार्यक्रम में अब आइए आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म हमराज का ये लोकप्रिय गीत।

हमने इस कार्यक्रम की थी तो आपसे हमने कहा था कि हम कुछ खूबसूरत दर्द भरे नगमे आपको सुनवाएंगे। आज कार्यक्रम सुहाना सफर सुन रहे हैं आप। दर्द भरे नगमे हमेशा बयां करते हैं उस दर्द को, उस तकलीफ को जो किसी अपने ने दी है। जी हाँ, इन गीतों के जरिए हम अपनों के दिए गए जख्मों और उनकी दी गई तकलीफों को बयां करते हैं। हम उन्हें एहसास दिलाते हैं कि तुमने जो किया है वो गलत किया है। ये एहसास गीतों के जरिए, लफ्ज़ों के जरिए दिलकश अंदाज में पेश किया जाता है। और एक ऐसा ही खूबसूरत गीत हम अगला आप सभी को सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रईस अख्तर की लिखी गज़ल के कुछ अशआर आप सभी से साझा कर रहा हूँ। एक धोखा है दिलकशी का, एक धोखा है दिलकशी क्या है, हम समझते हैं दोस्ती क्या है। एक धोखा है दिलकशी क्या है, हम समझते हैं दोस्ती क्या है। आंसुओं की हो और उम्र दराज, चांद तारों की रोशनी क्या है। हमने देखा है भीगी पलकों को, आप क्या जाने तिश्नगी क्या है। रूठना एक अदा तो है लेकिन, रूठना एक अदा तो है लेकिन, ये हमेशा की बरहमी क्या है। एक धोखा है दिलकशी क्या है, हम समझते हैं दोस्ती क्या है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म आए दिन बहार के से। इस गीत को गाया था मोहम्मद रफी ने। इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर अब यहीं संपन्न होता है। मैं आशा करता हूं कि कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। गीतों के चुनाव और कार्यक्रम की प्रस्तुति से जुड़ी कोई भी प्रतिक्रिया अगर आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर खत लिखिए। खत लिखने के लिए हमारा पता नोट डाउन करें, कार्यक्रम सुहाना सफर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर आदमपुर भागलपुर बिहार, पिन कोड है 812001। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है phair@bhagalpur.com। मैं था आपके साथ आज के अंक में आपका रेडियो दोस्त महताब। इसी के साथ कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के

0: उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the